ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 21वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 11 जून 2026 वार गुरुवार सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारे आज के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठुला मारू चैनल है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री

0: के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज का विचार। विषय है गांधी और मानवता। वाचक स्वर हैं सुश्री मंदाकिनी जोशी के।
4: महात्मा गांधी के जीवन पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होगा कि आम आदमी की जिंदगी को

उन्होंने बहुत करीब से पढ़ा, अनुभूत किया और उनकी समझ और पीड़ा को एहसास की गहराइयों में उतारा। इस पीड़ा ने ही गांधी को गांधी बनने का रास्ता दिखाया। इस सदी में खड़े हुए हम यदि गांधी की जिंदगी की ओर दृष्टि डालें तो लगेगा कि दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत ही साधारण कद और काठी का आदमी आक्रोश और विद्रोह के प्रदर्शन के माध्यम से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अकेली जंग छेड़ने पर आमादा है। साथ ही इस विद्रोही का अहिंसात्मक तरीका भी अनूठा है। जहां जिस चीज के खिलाफ जंग है उसको हद के पार की सहन करने की शक्ति का भी प्रदर्शन है। इस तथ्य से यह जाहिर है कि गांधी के भीतर का आम पीड़ित और कमजोर आदमी और उसके मन में कहीं सुलगती चिंगारी का एहसास है। साथ ही भारत के आम आदमी की तकलीफों और अत्याचार अन्याय को बर्दाश्त करने की क्षमता की संवेदना भी उनके मन में बैठी हुई है। एक तरह से गांधी और भारत का आम आदमी इस बिंदु पर कहीं अपनी एक सी पहचान प्रकट करते हैं। लगता है कि गांधी के जज्बे में भूखे नग्न या अर्धनग्न और कमजोर लोगों की पीड़ा कहीं कशमसाई और उससे शक्ति ग्रहण करके गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर एक संकाय के साथ कदम रखा। गांधी में यह शक्ति अद्भुत क्षमता पैदा हुई इस सबसे नीचे समझे जाने वाले वर्ग के खड़े होने और जागृत होने से। गांधी में यह भी क्षमता पैदा हुई कि वो लोगों में गांधी होने का मादा पैदा कर सके। दुनिया के बीच दुनिया की बातों के साथ गांधी एक आध्यात्मिक अवतार की तरह थे। आध्यात्मिक जीवन के केंद्र बिंदु थे और उनके वक्तव्य एवं कृतित्व के संयोजन ने उनके भीतर एक ऐसा प्रकाश दीप जलाया जिसके उजाले में दुनिया को खुद को पढ़ने का सही तरीका मिला। अहिंसा एक शब्द जो उनके जीवन कार्यों और सिद्धांतों में जिस ढंग से परिलक्षित हुआ उसे मानव समाज के विकास का आने वाली सदी में विश्व की अनेक समस्याओं के निदान का रास्ता माने जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। ये रास्ता है सेवा का, पीड़ा झेलकर भी दूसरों की पीड़ा दूर करने के भाव का, त्याग का और मानवीय संवेदना का। उन्होंने निरंतर अपने अनुभवों के बीच, काम के बीच सत्य की खोज की। मानव समाज को उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना कार्य क्षेत्र बनाया। राजनीति में रहकर भी वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे सन्यासी थे, महात्मा थे, लेकिन किसी वन में उन्होंने तपस्या नहीं की। वे नैतिकता के स्वर पर एक महान पुरुष थे, गत सदी का सशक्त स्वर थे जिसकी प्रतिध्वनि न जाने कितनी सदियों में गूंजती रहेंगी। गांधी एक वैज्ञानिक भी थे, उनका दिमाग एक वैज्ञानिक की तरह खुला था और सदैव जिंदगी की प्रयोगशाला में उन्होंने न जाने कितने प्रयोग किए। उनका एक दर्शन भी है, आदमी की जरूरतों के ठोस धरातल पर उसकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उसके आदमी होने के वजूद के स्तर पर उनका सर्वोदय का सिद्धांत जो सबकी भलाई सभी की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने की ओर संकेत देता है। यहां वर्ग भेद नहीं, किसी के शोषण या दबाव के लिए कोई गुंजाइश नहीं। गांधी जी का विश्वास था कि यह समाज का दायित्व है कि हर आदमी अपने में मौजूद सर्वश्रेष्ठ गुणों क्षमताओं को जहां तक संभव हो पहचाने और उसका विकास करे, साथ ही दूसरे व्यक्तियों के प्रस्फुटन में भी योग दे, और ऐसा करने में समाज स्वयं बलवान बनेगा। गत सदी के एक महान चिंतक थे महात्मा गांधी। उन्होंने समाज और समुदाय के स्तर पर एक दृष्टि दी, नैतिकता, शांति, अहिंसा, सत्य, सर्वोदय, सत्याग्रह उनके हथियार थे। गांधी की जिंदगी में दर्शन के मायने तर्क वितर्क नहीं थे, उनका दर्शन तो कार्य करने और मानव जीवन को बेहतर दिशा देने का व्यवहारिक दर्शन था। नैतिकता विहीन आज के इस माहौल में गांधी बनना संभव नहीं रहा, लेकिन गांधी के सामने है राजनीति में नैतिकता, जिंदगी के हर क्षेत्र में सही और गलत के बीच फर्क करने का नाम है गांधी, और उस सही को जीने तथा गलत का विरोध करने का अर्थ है गांधी।

अभी आपने सुना आज का विचार, विषय था गांधी और मानवता। वाचक स्वर थे सुश्री मंदाकिनी जोशी के। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गुरु वंदना के साथ।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी बीकानेर का ये ट्रू नॉर्थ चैनल है। मेरा 215.05 मीटर अर्थात 1355 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे रामचरित मानस गान
1: एपिसोड नंबर 56। एपिसोड नंबर 56।

एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततो गत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृतसनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृत सरीखी ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनय युक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए।

आपने सुना रामचरित मानस गान। आकाशवाणी बीकानेर का ये टूल हमारा चैनल है। 6:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

फिल्म संगीत का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आज आप सुनिए वार्ता, विषय है खेलों में महाशक्ति बनने के लिए प्रयासरत भारत। वार्ताकार होंगे श्री आत्माराम भाटी। 8:45 पर समय रहेगा सुगम संगीत का। 9:10 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी मुंग। 9:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। 9:55 पर आज आप सुनेंगे रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलोवाट ट्रांसमीटर के उद्घाटन समारोह का सजीव प्रसारण। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा सुबह 9:55 पर। 11:00 आज आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आतंकवाद के प्रति भारत की नई नीति पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ विशेष साक्षात्कार। 11:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 12:10 पर आप सुनेगा सिंधी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा और 12:40 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का।

दोपहर 1:05 पर महिला श्रोताओं का कार्यक्रम होगा घर आंगन और 2:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 4 आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

हमारी संध्याकालीन सभा में 5:05 पर युवा श्रोता अपने कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। 6:05 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत। 7:00 ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 8:00 आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम लोक संगीत का। रात्रि 9:15 पर आप सुनेगा फिल्म संगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गजलें। 10:00 आप सुनेगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा और 10:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

0: आपने सुना हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 6:45 होने को है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज आप सुनिए लघु वार्ता, विषय है आफरा रोग लक्षण और बचाव। वाचक स्वर होंगे श्री अश्विनी व्यास की।
1: आफरा रोग के बारे में आज आप चर्चा कर सा। तो ओजी को रोग है और बहुत ही खतरनाक रोग है। ई रोग में पशु ने समय पर इलाज मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अगर समय पर पशु ने इलाज नहीं मिले तो पशु की मौत भी हो सके। और रोग पशुओं के मायने ज़्यादा हरो चारो खाने से बीरे पेट में दूषित गैसा या कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन और अमोनिया आदि एकत्रित हो जाने से पेट फूल जावे, और पेट फूल जाने के कारण पशु में बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जावे। ई रोग नहीं आफरो रोग कहवे। आफरा रोग रिया तो

0: सारा कारण है जिका में जो कई कारण है दूषित आहार खा लेनो। अगर पशु कोई दूषित आहार खा लियो है तो भी दूषित आहार के कारण पशु रे पेट में आफरो हो सके। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थारो सेवन अगर आप पशुओं ने करा सा तो वो कार्बोहाइड्रेट भी पेट में जार गैस में परिवर्तित हो जैसी और पशु ने भी बहुत ज्यादा नुकसान हो। खाने रे मायने अगर आप अचानक कोई परिवर्तन करना मतलब पहला जी की चीज आप पशु ने दे रहा अचानक भी न बंद कर और कोई दूसरी वस्तु पशु ने खिलानी शुरू कर दा तो भी शुभ संभावना रहे कि आफरो रोग हो सके। अगर ज्यादा मात्रा में आप गीलो हरो चारो पशु ने खिला देवा और वो ज्यादा मात्रा में भी न तो भी शुभ बने आफरो हो सके। काम करने के बाद में एकदम अगर पशु ठंडो पानी पी ले वे तो भी ठंडे पानी से भी आफरो रोग हो जाया करे है। गले में अगर कोई तरह की रुकावट पैदा हो जावे तो भी शुभ आफरो रोग पैदा पशु में हो सके। इरे सागे सागे पेट री मांसपेशियां में खिंचाव री शक्ति अगर कम हो जावे तो भी शुभ पशु आफरे रोग से पीड़ित हो सके। चारों और भूसे रह सके कदी कदी पशु जहरीला कीड़ा मकोड़ा भी खा जाया करे है और ए पेट में जार आफरे री समस्या पैदा कर सके। हरे चारे ने खेत सु काट और सीधो पशु ने अगर आप खिला देवा तो भी शुभ कई बार आफरो हो जाया करे। इरे सागे अगर पशु दूषित पानी भी पी लेवे तो भी शुभ बिने आफरो रोग हो जाया करे। तो ये रोग रा कई लक्षण हैं जिका ने देख रहा पर समझ सका कि पशुओं में आफरो रोग हो गया है। तो बे लक्षण हैं कि आफरे रोग रो सबसे बड़ो लक्षण है कि रुमेन में गैस भरे और बा फूल जावे। बहुधा बाई तरफ रिजी की कोख है वह खूब फूलोड़ी सी प्रतीत होवे। इन्हें अंगुलियां सु अगर आप ढकला तो डमडम जैसी आवाज सुनाई देवे। पशु ने सांस लेने में कष्ट होवे तो समझ जानो चाहिए कि भी मैं आफरो हो गयो है। पशु बेचैन रहन लाग जावे। सागे सागे पशु खानो पीनो जुगाली करनो बंद कर देवे तो भी आपने समझ लेना चाहिए कि भी मैं आफरे री समस्या होगी है। पशु दी आँखियाँ और सिराया उभरोड़ी सी दिखन लाग जावे। बीरे सागे पशु रो चेहरो जिको है विपरीत दया रो भाव दिखे दर्द रो भाव दिखे तो आपने समझना है कि आफरे री समस्या है। पशु रे मुंड सु अगर लार बार बार गिरती रहे या पशु आपरी जीभ बांड निकाल लेवे तो भी ओ आफरे रो ही लक्षण कहलावे है। पशु अगर बार बार उठे और बैठे और बेने एक जगह चैन नहीं मिले तो भी वो आफ रही है। पशु रे श्वास जी की है मुंह सु अगर लेवे नाकरी बजाए तो भी आफरे रा लक्षण है। पशु रो गोबर और पेशाब निकलना अगर बंद हो जावे तो वो भी आफरे रो कारण है। अंतर मायने रोगी पशु जी को है वो करवट लेर और गहरी और लंबी सांसा लेवे तो आपने समझ जानो है कि वो आफरे रोग रो पीड़ित है और इन्हें इलाज री जरूरत है। तो आपने डॉक्टर सु मिल और भी पशु रो इलाज करवानो है ताकि समय सु पहला वो ठीक हो सके और कोई गंभीर और बड़ी समस्या पशु में पैदा नहीं होवे। अगर कोई पशु में इस तरीके का लक्षण दिखाई देवे तो मैंने दूसरा पशुओं से थोड़ा अलग रख लेना है फिर विशेष ध्यान रखना है और जब तक चिकित्सक नहीं आवे जब तक आप जगह देसी इलाज है वह करना है। जी पानी को नहीं पिलाना कोई तरह रो बिना चारो को नहीं देना और प्रयास वो करना है कि मौसम रो भी पर कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं रहे। अगर आप ध्यान रखा तो पशुओं में आप आफरे रोग ने समय से पहला ही नियंत्रित कर सका। हाँ
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज आपने सुनी लघु वार्ता। विषय था आफरा रोग लक्षण और बचाव। वाचक स्वर थे श्री अश्विनी व्यास के। 6:50 हुए हैं। अब आप सुनिए लोक भजन।

0: आपने सुना लोक भजन। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन

0: डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढ मापन योग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44,100 कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं NDA सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन्नवसरे NDA घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्ज, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मंत्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24-2000 वर्षस्य अथ च 25-2000 वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे PV सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। सुबह के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह के इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर सुबह की इस ताजी हवा में, जब सूरज की किरणें हमारे घरों को छू रही है, रसोई से चाय की खुशबू आ रही है, तब इस स्टूडियो में बैठकर आज मैं सोच रहा था कि क्यों ना जिंदगी के एक बहुत ही गहरे लेकिन बहुत ही सरल विषय पर आपसे बातचीत की जाए। कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम बात करेंगे दो शब्दों की, जो वास्तव में हमारी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक हमारा कर्म और एक कृपा। दोस्तों, श्रोताओं, अक्सर हम हमारी डेली लाइफ को, यानी कि रूटीन लाइफ को, वास्तव में कई बार एक जेल की तरह समझ लेते हैं। वही सुबह उठना, वही भाग दौड़, वही जिम्मेदारियां, लेकिन वास्तव में यह साधारण सी दिखने वाली रोजमर्रा की जिंदगी असल में कर्म और कृपा को कितनी गहराई रहस्यमयी प्रयोगशाला से जोड़ती है, इस विषय पर आज आपसे बातचीत करते हैं। अक्सर हम कृपा को किसी चमत्कार या लॉटरी से जोड़ते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा रुक कर, ठहर कर गहराई से सोचते हैं, तो जब सुबह आँख खुलती है, तो जब हम पहली सांस लेते हैं, वो परमात्मा की कृपा है और वही उसका आशीर्वाद है। भोजन करना, शरीर का ध्यान रखना और इस जीवन को चलाने के लिए रोजमर्रा के काम करना, वास्तव में यह हमारा सचेत प्रयास है, यानी कि हमारा कर्म है। लेकिन जब रात को हम गहरी नींद में सोए और जब हमारा अपने शरीर पर कोई भी कंट्रोल नहीं था, तब भी हमारा पूरा शरीर चलायमान था, चल रहा था, हमारा हृदय धड़क रहा था, हमारी सांसें चल रही थी। वास्तव में यही कृपा है। जीवन में कर्म हमारी इच्छा शक्ति है, लेकिन उस इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए जो प्राण ऊर्जा हमें हर पल मिलती है, वास्तव में वही कृपा है।

अब इसे थोड़ा और गहरे से समझते हैं कि रोज दोपहर की उस भागदौड़ की कल्पना कीजिए आप कि जब ऑफिस में काम का दबाव चरम पर हो और घर की जिम्मेदारियों का पहाड़ हो और हर तरफ वास्तव में मानसिक शोर हो, तो उस समय हमारा कर्म क्या है? उस शोर के बीच भी अपने पैर जमीन पर टिकाए रखना, चिड़चिड़ेपन के बजाय अपने काम को पूरी ईमानदारी और अवेयरनेस के साथ निभाते चले जाना, यह आपका कर्म है, एक सचेत युद्ध। और कृपा क्या है? उस भीषण तनाव के बीच भी महज कुछ पलों के लिए आपके और हमारे भीतर एक अजीब सा ठहराव आ जाना, एक ऐसा मौन जो बाहर की उथल पुथल से अछूता कर देता है और वास्तव में वो हमें कभी टूटने नहीं देता, यही वह कृपा है। वास्तव में जब हम सुबह से शाम तक केवल मुझे यह करना है, मुझे वो पाना है कि अहंकार से जीते हैं, तो हमारा कर्म एक बोझ बन जाता है और वास्तव में हम थक

जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, टूट जाते हैं। वास्तव में हम अपने कर्म को अगर कृपा से जोड़ दें तो हमें फिर उस अवसाद के लिए, उस अवसाद को नहीं सहना पड़ेगा। जब हम रसोई में काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, लैपटॉप पर कोई कोडिंग कर रहे हैं, तो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि मेहनत करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और उस कर्म को अंजाम तक पहुंचाना उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है और वही वास्तव में कृपा है। गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन जब हम कर्म पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण वेग के साथ करते हैं, तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो हमें नहीं मिल सकता, लेकिन उसे उस परमात्मा की कृपा पर छोड़ने से, अगर उसमें कुछ ऊंच नीच रहती है, कुछ कम रहता है, तो उसे आशीर्वाद माना जाना चाहिए, अवसाद नहीं। तो जब भी हम कोई काम करें तो अपने कर्म को पूरी ताकत से करें, लेकिन बिल्कुल शांत भाव से। हमेशा ये याद रखें कि यह पूरा ब्रह्मांड उस ब्रह्मांडीय कृपा के घेरे में है। जब कर्म से समर्पण जुड़ता है तो साधारण सी दिनचर्या भी एक प्रार्थना बन जाती है, और वही प्रार्थना हमारे कर्म को ऊंचाइयों पर ले जाती है और हमें सफल बनाती है। इसलिए कर्म करते रहिए। श्रोताओं, अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह की शुरुआत में ये बहुत साधुवादी बातें हो गई, लेकिन वास्तव में ये बातें बहुत गहरी और प्रैक्टिकल है, और हमें हमेशा इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और जब आप सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले हैं, गाड़ी चला रहे हैं, घर पे सुन रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि कानों में कौन सा ऐसा फिल्मी गीत गूंजना चाहिए जो हर पल हमें वास्तव में कर्म और कृपा का यह खूबसूरत मर्म याद दिलाता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं बॉलीवुड के उस सदाबहार तराने की तरफ जो हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ की जिंदगी को बहुत गहराई से बयां करता है, और वो गाना है फिल्म मेरी जंग का, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जी हाँ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इस बारे में, इस गीत के कर्म और कृपा की चर्चा बाद में करेंगे, पहले सुनिए ये गीत।

जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जी हाँ, यह लाइन हमारी वही रोजमर्रा की रूटीन लाइफ है, सुबह उठकर दफ्तर जाने की जहदोजहद, ट्रैफिक से जूझना, बच्चों की स्कूल बस पकड़ना, बिजनेस के उतार चढ़ाव, ये वाकई किसी जंग से कम नहीं। यह धरातल की हकीकत है और जीत जाएंगे हम, ये वो लाइन है। यह हमारा कर्म है, यह हमारा संकल्प है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, हम मेहनत करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। यह हमारी इच्छा शक्ति है, यानी हमारी विल पावर। और कृपा क्या है? तू अगर संग है, जी हाँ, तू वो ब्रह्मांड या शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, वही वास्तव में वो अदृश्य शक्ति है, वो एनर्जी है जो हमारी कर्म को कृपा तक पहुंचाती है। तब जीत पक्की होती है और जीवन में हमें वो मुकाम हासिल होता है। तो चलिए कार्यक्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चर्चाओं का दौर जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, किसी भी समाज की संस्कृति, सोच और संघर्ष और उसकी आत्मा को समझने के लिए हमें उस दौर के साहित्य और सिनेमा को देखना चाहिए। विद्वानों ने ठीक ही कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है और आधुनिक युग में सिनेमा इसी दर्पण का एक दृश्य और गतिशील रूप है। ये दोनों माध्यम समाज से ही अपनी कहानियां चुनते हैं और बदले में समाज को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों से रूबरू कराते हैं। साहित्य मनुष्य की वैचारिक और भावात्मक यात्रा का लिखित इतिहास है। जब समाज में कोई बदलाव आता है, कोई क्रांति होती है, कोई कुप्रथा पनपती है, तो लेखक की कलम सबसे पहले सक्रिय होती है। अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों से, तो आप जैसे गोदान या गबन को पढ़कर हम तत्कालीन भारतीय ग्रामीण समाज और जातिवाद और गरीबी के दर्द को गहराई से महसूस करते हैं। उसी तरह कबीर, तुलसीदास से लेकर आधुनिक कवियों जैसे दिनकर और निराला तक साहित्य ने हमेशा समाज में फैली रूढ़ियों पर प्रहार किया है और शोषितों, वंचितों की आवाज को बुलंद किया है। साहित्य हमेशा समाज के उन विचारों को सहेज कर रखता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में और पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। और जिस तरह समय बदला और तकनीक के विकास के साथ सिनेमा का जन्म हुआ, सिनेमा ने साहित्य के शब्दों को पंख दिए और उन्हें पर्दे पर जीवंत कर दिया। जहां साहित्य को समझने के लिए साक्षरता और कल्पनाशीलता की जरूरत होती है, वहीं सिनेमा अपने दृश्य और श्रव्य यानी कि आवाज से समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। अगर हम बात करें भारतीय सिनेमा की, तो भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में मदर इंडिया, दो बीघा जमीन जैसी फिल्मों ने आज़ादी के बाद के भारत के किसानों के संघर्ष को दिखाया और वही 70 और 80 के दशक के एंग्री यंग मैन ने बेरोजगारी और व्यवस्था के खिलाफ युवाओं के आक्रोश को पर्दे पर उतारा। और आज का सिनेमा आर्टिकल 15, दंगल, थप्पड़ और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों के माध्यम से सीधे असमानता, जातिवाद और स्वच्छता जैसे गंभीर मुद्दों पर चोट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सिनेमा और साहित्य हमेशा से समाज का आईना रहे हैं। जब कोई पाठक किसी किताब के पात्र के दुख से रोता है या दर्शक पर्दे पर किसी संघर्ष को देखकर भावुक होता है, तो समाज में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकास होता है। हमेशा साहित्य और सिनेमा समाज के ऐसे सशक्त माध्यम हैं जिनके बिना एक जागरूक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि समाज शरीर है, तो साहित्य और सिनेमा उसकी आंखें और विचार हैं। एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि हमारा साहित्य और सिनेमा अपनी जड़ों से जुड़े रहें और समाज की हर बुराई, हर कुरूति पर बेबाक प्रहार करें और उसे बेहतरीन तरीके से समाज के विषयों पर आवाज़ उठाने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। और इसी संदर्भ में अब आगे चलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और ये गीत बिल्कुल हमारे आज के विषय से जुड़ा है, सिनेमा और साहित्य समाज का आईना। इस गीत के बारे में आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल सुनिए गीत।

जी हाँ दोस्तों, इस गाने को लिखने वाले साहिर लुधियानवी खुद साहित्य जगत के बहुत बड़े स्तंभ थे। ये लाइनें कला और कलाकार की असलियत बताती है। एक लेखक या एक फिल्मकार का जीवन तो छोटा सा होता है, लेकिन वो पल दो पल के लिए इस दुनिया के मंच पर आता है और अपनी बात कहता है और चला जाता है। लेकिन जो कहानी वो पीछे जोड़ जाता है, जो आईना वो समाज को दे जाता है, वो सदियों तक जिंदा रहता है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। यह लाइन सीधे समाज के बदलते दौर को दिखाती है। समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी समाज में दुख और संघर्ष का दौर होता है, तो कभी खुशहाली और बदलाव का दौर। सिनेमा और साहित्य के पर्दे पर ये सारे रंग बदलते हैं, क्योंकि समाज बदल रहा है। कल और आएंगे नगमे की खिलती कनियाँ चुनने वाले, ये लाइनें सीधे थिएटर के दर्शकों और रेडियो के श्रोताओं को समर्पित है। आज मैं इस माइक पर हूँ, कल कोई और होगा। आज आप मुझे सुन रहे हैं, कल नई पीढ़ी नए सिनेमा और नए साहित्य को सुनेंगे। यह आईना कभी पुराना नहीं होता, इसमें बस चेहरे बदलते रहते हैं। कला का यही सफ़र तो समाज का असली सच है।

और आज हम बात साहित्य, सिनेमा और समाज के आईने की बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख यानी 11 जून इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे हमारे स्टूडियो में आकर खड़ी हो गई है। आज भारत माँ के उस महान सपूत की जयंती है जिसने कलम से क्रांति की इबादत लिखी थी और फांसी के फंदे को चूमकर अमर हो गया। जी हाँ, आज जयंती है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी के रूप में हम जानते हैं जिन्होंने काकोरी कांड का नेतृत्व किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में वो बेहद ही संवेदनशील और उच्च कोटि के कवि और लेखक

और साथ साथ अनुवादक भी थे। बिस्मिल उनका नेक नेम था, यानी कि तखल्लुस था। जब देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा था, तब उनकी कलम समाज का वो आईना बनी जिसके सोए हुए हिंदुस्तान को जगाया। उन्होंने जेल की कोठरी में बैठकर अपनी आत्मकथा लिखी। जब वो लिखते थे तो शब्दों की चिंगारियाँ निकलती थी, और जब वो गाते थे तो फांसी का फंदा भी मुस्कुरा के उड़ता था। उन्होंने लिखा, मालिक तेरी रजा रहे, तू ही रहे, तू ही रहे, बाकी न मैं रहूँ न मेरी आरजू रहे।

सुबह में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर जब पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इससे अच्छा कोई गीत हो ही नहीं सकता। तो सुनिए और महसूस कीजिए कि वास्तव में उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है और हमें क्या दिया है।

दिल गर्व से भर गया और रगों में जैसे खून नहीं एक नया जुनून दौड़ने लगा। राम प्रसाद बिस्मिल साहब के अमर शब्द हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि इस आजाद सुबह की कीमत क्या है। श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां तेज़ी से आगे बढ़ रही है और अब वक्त हो चला है आज के सफ़र को यहीं थामने का और आपसे विदा लेने का। आज सुबह से लेकर अब तक हमने आपसे बहुत बातें की, कर्म पर, कृपा पर, साहित्य पर बहुत सी बातें करी और आपसे बात करके आनंद भी बहुत आता है। लेकिन ये खूबसूरत सा साथ आज यहीं तक, लेकिन फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों से प्यार कीजिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन। आज के कार्यक्रम सुप्रभात में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कभी कभी से गीत। इस गीत को लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है खयाम ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे बहारे फिर भी आएगी से आवाजें हैं महेंद्र कपूर की। ये गीत सुनिए लेकिन इस ब्रेक के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना किशोर कुमार, आर डी बर्मन, भूपेंद्र और साथियों की आवाज़ में फिल्म सत्ते पे सत्ता से गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म पापा कहते हैं से।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। 8 बज चुके हैं, अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से
1: 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया।

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है। विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में

0: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
3: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की

0: सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
1: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। प्राइम मिनिस्टर सेज लिफ्टिंग मोर देन 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग पास्ट 12 इयर्स ऑफ एनडीए गवर्नमेंट शोज दैट इट्स पॉलिसीज आर करेक्ट एंड मूविंग इन राइट डायरेक्शन। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स प्लान्स टू चैनल इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 1,00,000 करोड़ रुपीज इनटू वेस्ट बंगाल। IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on

0: Chhattisgarh, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Odisha and Uttarakhand. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Shagun. All the dailies lead to PM Modi becoming the longest serving elected Prime Minister, and congratulatory wishes pouring in from around the world for this historic milestone in the journeys of Indian democracy. Modi 12.0 One Vision Nation First. In a document titled Nation First, the core mantra issued to mark 12 years of the current government. The centre emphasised its vision of Rashtra Pratham and asserted that it is no longer just a sentiment but the lifeblood of India leads the pioneer. For the first time in its dealings with the Trump administration, India summoned a top US diplomat in New Delhi following an attack earlier in the day by American forces on a commercial ship off the coast of Oman, cites the Indian Express under the headline, Three Indians Missing After Attack, Delhi Summons US Diplomat. Army Chief General Upendra Dwivedi reviews the operational readiness of troops, reports the Asian Age, announcing the first build to suit data center capacity in India for Meta. The Financial Express mentions Reliance Meta deepened ties with AI data center deal. Pact highlights new infra model for AI build out. The Times of India in its editorial piece titled Control Shift, AI is not destroying the job market but changing it. There will be jobs aplenty if you update your skills. In white collar circle, this is the best of times. And finally, human contribution to global warming highest ever in 2025, says an annual study called Indicators of Global Climate Change. The findings are a further reminder to the rapidly rising global temperatures, writes the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आज आप सुनिए वार्ता, खेलों में महाशक्ति बनने के लिए प्रयासरत भारत। वार्ताकार हैं श्री आत्माराम भाटी।
3: एक दशक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जांबाज खिलाड़ी खेल के मैदान में अनेक खेलों में अपने दमखम से बेहतरीन प्रदर्शन कर जीत का डंका बजाते हुए देश का नाम खेलों की दुनिया में नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। इस सफलता के पीछे खिलाड़ियों की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का भी पूरा पूरा सहयोग है। श्रोताओं, वर्तमान सरकार ने देश में खेलों में जमीनी स्तर से प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, विद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर बच्चों व युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए अनेक खेल योजनाओं को लागू किया हुआ है और वास्तव में इन योजनाओं का फायदा भी देखने को मिल रहा है, जब स्थानीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं। चूंकि भारत को 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल चुकी है व 2036 में ओलंपिक का संभावित मेजबान भी है, ऐसे में देश में खेलों में क्रांति का बिगुल बजाना लाजमी भी हो गया है, ताकि इन दोनों बड़े आयोजनों में हमारे खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर देश को खेलों में महाशक्ति बनाने के लिए जी जान लगा दें। लेकिन इसके लिए खेलों में पारदर्शिता व ईमानदारी व सही प्रतिभाओं को पहचान कर आगे लाने के लिए कोई ठोस नीति की आवश्यकता थी। अब यह नीति राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम विधेयक 2025 के रूप में हमारे सामने भी आ चुकी है। लेकिन श्रोताओं, इस बात

पर बात करने से पहले अभी तक के हमारे खेल परिदृश्य पर एक नजर डाल लें। श्रोताओं, आजादी के 75 साल से ज्यादा के सफर के बाद भी भारत विश्व स्तर पर खेलों में अपनी वो पहचान नहीं बना पाया है जितनी अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस आदि देशों ने बनाई है। आज भी 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी को अपनी धरा पर उठाए भारत ओलंपिक व विश्व स्तर के बड़े आयोजनों में ज्यादा पदकों की जीत के लिए तरसता रहता है। भारत ने अब तक 25 ओलंपिक में भाग लिया लेकिन कुल पदक 41 ही जीत पाया, इसमें भी स्वर्ण मात्र 10 ही हैं, जबकि 19 एशियाई खेलों में 183 स्वर्ण सहित 779 पदक जीते हैं। श्रोताओं, प्रश्न यही है कि 2010 के बाद 2030 में दूसरी बार हम राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेंगे, यही नहीं 2036 में दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ ओलंपिक की मेजबानी भी मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन इतने बड़े आयोजनों की मेजबानी से पहले प्रश्न यह है कि देश की मिट्टी से इतनी बड़ी आबादी के बाद भी हम खेलों में ऐसे 100 खेल रत्न तैयार नहीं कर पा रहे हैं जो ओलंपिक पदक तालिका में अपने दमदार प्रदर्शन से जीत का सहरा पहनाकर देश को प्रथम 3 स्थान में दिला पाने में पूर्ण विश्वास दिला पाए। ओलंपिक व विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत की तो बात दूर है, अभी हमारे पास खेल मैदान के ऐसे 100 जाबाज खिलाड़ी भी नहीं हैं जो एशियाड में चीन, जापान व कोरिया जैसे देश के खिलाड़ियों को पटकनी देकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान भारत को दिला सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 दशक से भारतीय खिलाड़ी कुछ खेलों में एशियाई नहीं विश्व स्तरीय खेलों में अपनी धाक जमाने लगे हैं, लेकिन ये धाक खेलों के सबसे बड़े मंच ओलंपिक में या विश्व स्तरीय अन्य खेलों में अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। इसका सबसे बड़ा कारण किसी भी भारतीय खेल प्रेमी से पूछेंगे तो उसका सीधा सा जवाब मिलेगा कि देश में खेल के हर विषय स्तर और प्रबंधन में पारदर्शिता का अभाव है। श्रोताओं, बात भी सही है कि देश में खेलों को इन बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए कोई बड़ा कदम जब तक नहीं उठाया जाएगा तब तक देश में खेलों के स्तर को उठा पाना इतना आसान ही नहीं, मुश्किल भी है। श्रोताओं, जब भी 4 साल के अंतराल के बाद ओलंपिक या एशियाड आता है भारत का प्रदर्शन खेलों के इन महाकुंभ में फिसड़ी रहता है, तब देश में खेलों के उत्थान के लिए मजबूत खेल पॉलिसी लागू करने के लिए चर्चाएं जोर शोर से उठती है, लेकिन वर्तमान सरकार से पहले की कोई भी सरकार ठोस कदम इस बाबत नहीं उठा पाई। अब जबकि वर्तमान सरकार द्वारा देश को खेलों में हर हाल में महाशक्ति बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम विधेयक 2025 को कानूनी अमलीजामा पहनाकर जो बीड़ा उठाया गया वो सराहनीय कदम है। इस विधेयक में जमीनी स्तर से खेलों में खेल की प्रतिभाओं को आगे लाने, स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर के खेल महासंघों में कई दशकों से कुंडली मार कर बैठे आकाओं वास्तविक प्रतिभाओं को नज़रअंदाज कर उनमें कम योग्यता वाले अपने ही रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने वाले, खेल बजट की राशि को पूर्ण रूप से खेलों के विकास में काम न लेकर अपने घर का विकास करने वाले आकाओं को दरकिनार करने के लिए पहली बार एक मजबूत राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम विधेयक 2025 लाया गया है, जो सराहनीय कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रोताओं, भारतीय खेलों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम विधेयक 2025 को संसद के दोनों सदनों और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक कानून बन चुका है। इस तरह भारत खेल प्रशासन को सुचारू करने के लिए औपचारिक कानून रखने वाले अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और जापान जैसे देशों में शामिल हो गया है। लेकिन खिलाड़ियों, खेल प्रशासकों व खेल प्रेमियों के दिलों में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या यह विधेयक वास्तव में देश में खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। श्रोताओं, इस खेल विधेयक में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें खेल संघों में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए स्पष्ट आयु और कार्यकाल सीमा तय की गई है, जिसमें लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवाद और भ्रम खत्म होंगे। देश भर में चयन और चुनाव विवादों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का गठन होने से विवाद खत्म होंगे। कोई खेल संगठन जो भारत या भारतीय या राष्ट्रीय शब्द या राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह का उपयोग करना चाहता है उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त

करना होगा। किसी भी खेल संस्था की कार्यकारी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 15 होगी, जिनमें कम से कम 2 खिलाड़ी और 4 महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय खेल बोर्ड के पास खेल महासंघों को मान्यता देने या निलंबित करने की भी शक्तियां होंगी। श्रोताओं, इस विधेयक में खेल संघों में पदों के लिए आयु और कार्यकाल सीमा भी तय की गई है। इसमें अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष पद के लगातार 3 कार्यकाल की अवधि को कुल 12 वर्ष तक सीमित किया गया है। आयु सीमा 70 वर्ष रखी गई है, जो संबंधित खेल के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और नियमों द्वारा अनुमति मिलने पर नामांकन के समय 75 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। जैसे ICC में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, इसलिए BCCI पर 70 वर्ष का नियम लागू नहीं होगा। इसी तरह साइकिलिंग की वैश्विक संस्था में पद पर बने रहने की अधिकतम उम्र सीमा 75 साल है, तो भारतीय साइकिलिंग महासंघ को आयु सीमा में छूट मिलेगी। श्रोताओं, इस विधेयक को लेकर खेलों से जुड़े लोगों ने अच्छी प्रतिक्रियाएं भी दी है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करने के लिए पदक रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस विधेयक के माध्यम से देश में खिलाड़ी केंद्रित माहौल होगा, महासंघों में पारदर्शिता आएगी और विवादों के समाधान में तेजी आएगी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा ने इस ऐतिहासिक नीति का स्वागत किया और इसे सही दिशा में उठाया गया एक कदम बताया, क्योंकि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे दशकों से चला आ रहा ठहराव दूर होगा और देश के खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अंतरिम सचिव सुंदर अय्यर कहते हैं कि यह निश्चित रूप से अच्छा है, क्योंकि इसमें चीजें स्पष्ट हो जाएगी। सभी को नियमों और विनियमों के एक ही खाके का पालन करना होगा। इससे पहले अलग अलग खेल संघों के लिए अलग अलग नियम होते थे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने कहा, यह विधेयक 2036 के ओलंपिक के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ये संघों में कानूनी मामलों की संख्या को कम करेगा और खेलों को समृद्ध होने देगा। ये लंबे समय तक चलने वाली अदालती कार्रवाई पर होने वाले अनावश्यक खर्च को भी बचाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने इससे होने वाले फायदे का जिक्र करते हुए कहा, कई राष्ट्रीय खेल संघ अदालती मुकदमों के बोझ तले दबे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ 350 से अधिक मामलों में शामिल है। इस विधेयक में प्रस्तावित 5-8 से काफी पैसे की बचत हो सकती है। देश में खेलों में क्रांति लाने के लिए वित्त मंत्री ने बजट 2026 में खेल को पूरी तरह बदलने के लिए 10 साल का रोड मैप पेश किया है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार हो। इसके साथ ही 2030 में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेल के लिए मेजबानी की भी तैयारी की जा रही है। इस दिशा में खेल बजट में करीब 33% का इजाफा किया गया है। पिछला खेल बजट 3,346.54 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 4,479.88 करोड़ रुपए हो गया है। खेलो इंडिया मिशन को केंद्र में रखते हुए सरकार ने इसके लिए 924.35 करोड़ रुपए तय किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। देश में खेलो इंडिया मिशन के मुख्य लक्ष्य तय किए गए, उनमें ट्रेनिंग के सेंटर के जरिए खिलाड़ियों को तराशने का एक सिस्टम बनेगा। कोच और सपोर्ट स्टाफ को प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया जाएगा। खेल विज्ञान और टेक्नोलॉजी को खेलों से जोड़ा जाएगा। खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग कराई जाएंगी। ट्रेनिंग के लिए आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। श्रोताओं, सरकार गंभीरता से खेलों के विकास के प्रति गंभीर है। इसका उदाहरण यह है कि पिछले 3 सालों में खेल इंडिया बजट में बढ़ोतरी की गई है। 2024-25 में यह बजट 620.75 करोड़ था, जिसे 2025-26 में 700 करोड़ कर दिया गया। वह इस बार 2026-27 में 924.35 करोड़ किया गया है। साथ ही बजट में नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च के लिए 15 करोड़ रुपए, जम्मू कश्मीर में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए 5 करोड़ और इस साल होने वाले ग्लासगो राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए 50 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। यही नहीं, इस बजट में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के 425 करोड़, खिलाड़ी प्रोत्साहन राशि के लिए 357.39 करोड़, राष्ट्रीय खेल विकास के लिए 3 करोड़, राष्ट्रीय खेल संघ के लिए 58.41 करोड़ व युवा हॉस्टल के लिए 19.20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। श्रोताओं, कुल मिला

0: कर भारत को खेलों में विश्व स्तर पर महाशक्ति बनाने में सरकार की ओर से खेल संघों, खेल मैदान, खिलाड़ी, प्रशिक्षण व प्रशिक्षकों को हर तरह से सुविधाओं को देने का हर तरह से प्रयास किया गया है। अब ये प्रयास कितना सफल होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। इस दिशा में राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम विधेयक 2025 वास्तव में जमीनी स्तर से भारतीय खेलों में कितना सकारात्मक बदलाव ला पाएगा ये प्रश्न हर खेल प्रेमी के दिमाग में है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ईमानदारी से भाई भतीजावाद अधिक उम्र के बाद भी पद की लालसा, सही प्रतिभाओं को मौका, इन बिंदुओं पर गंभीरता से काम होगा तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले 2 दशक में भारत भी खेलों में महाशक्ति बनते हुए ओलंपिक पदक तालिका में प्रथम 3 में अपना स्थान बना पाएगा।
1: अभी आपने सुनी वार्ता, विषय था खेलों में महाशक्ति बनने के लिए प्रयासरत भारत। वार्ताकार थे श्री आत्माराम भाटी। अब आप सुनिए देशभक्ति गीत इन संदेशों के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारो चैनल है। मेरी व्यू 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत।

भरे रहते हैं सारे फूल ही जिसके गरीबा में, वो क्या जाने कि टुकड़े हैं जिगर के मेरे दामा में। हवाएं अब्र में क्या मीर हंसता बाग में वो था, गिरी पड़ती है बिजली आज कुछ सहने गुलिस्ता में।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 9 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर, आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा

0: कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। श्री शर्मा कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रामजल सेतु लिंक, यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज 2 और रिफाइनरी जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं से राजस्थान में विकास का नया युग शुरू हुआ है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश में विभिन्न वर्गों को मिल रहा है। पाली के रहने वाले किसान रामचंद्र ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम बी योजना के तहत 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। इससे बिजली की बचत होने के साथ ही खेती में लागत भी कम हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: भारत सरकार की जो वाटरशेड की स्कीम है उसके तहत मैंने एक डिक्की बनवाई, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री कुसुम की योजना के तहत ये 5 किलोवाट का सोलर लिया जिसकी लागत 3,05,000 है, लेकिन सरकार किसानों को मात्र 1,30,000 उपलब्ध करा रही है। इस योजना के लाभ से ये कृषि कार्य में सुगमता आने लगी है एवं खेती की लागत में बहुत कमी आ गई। और सरकार ने जो ये सराहनीय कार्य किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर हैं। वे अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं। ये राज्य की 94% क्षेत्र को कवर करते हैं और 99% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है। कार्यक्रम के बाद श्री वैष्णव एमएनआईटी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित के कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आग जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, बिजली व्यवस्था, वातानुकूलन, आपातकालीन निकास, फायर फाइटिंग सिस्टम और पानी की उपलब्धता सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजामों की गहन जांच की जाएगी। स्टेशनों की जांच के लिए रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य अग्निशमन विभाग और विशेषज्ञ एजेंसियों का सहयोग भी लिया जाएगा। ऑडिट के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से आकलन किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। इनमें अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में 14 जून तक तेज आंधी और बारिश का दौर बना रह सकता है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की

0: संभावना है। विशेष तौर पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी और उमस का असर लगातार बना हुआ है। कल श्रीगंगानगर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि 19 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के पहले चरण की सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार को देखते हुए ये फैसला किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में ये सुधार दर्ज किया गया है। ग्रैप से जुड़ी उपसमिति प्रदूषण की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है और भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार आगे के आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। डाक विभाग ने युवाओं और छोटे व्यापारियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना 2.0 शुरू की है। पाली डाक विभाग के अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, पिकअप और डिलीवरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय EMS और ट्रैक्ड पैकेज सर्विस की बुकिंग का भी काम होगा।
1: इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट या पार्सल बुकिंग, पिकअप, कलेक्शन और पार्सल डिलीवरी, इंटरनेशनल EMS, EMI तथा इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज सर्विस जैसी सेवाओं की बुकिंग की जा सकेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं में आमजन की भागीदारी बढ़ाना है, ई कॉमर्स क्षेत्र में डाक विभाग की पहुंच मजबूत करना है और रोजगार के अवसर देना है। पाली के युवा और देश के युवा, राज्य के युवा अधिक से अधिक इस योजना से जुड़े और डाक विभाग में अपनी भागीदारी भी बढ़ाए और रोजगार के अवसर भी डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त करें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर, आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील

0: खांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में
0: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
0: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
0: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
0: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
0: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
0: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है। यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है
0: जी
1: या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार।
0: जी
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: फिर क्या होता है?
0: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया

0: के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
1: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम

0: आपकी है।
1: असली काम वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूं कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।

0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा यह होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा सात वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
0: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो यह है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है।

0: भी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौट

0: जाने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,

मजे की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग, आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। सुबह के 9:40 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत।
5: बनो जे बनी के सेव रे जी जोगे जी जी जी जी जी, बनो जे बनी के सेव रे तो मुख पर जबर सतनूर

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलोवाट ट्रांसमीटर के उद्घाटन समारोह का सजीव प्रसारण। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जा रहा है।
1: और ये खूबी है, बिना खरखराहट के स्टीरियो साउंड में संगीत और बातें सीधे हमारे श्रोताओं के दिलों तक उतरेंगी।
2: बिल्कुल, और जो रेडियो प्रसारण के माध्यम से और भी लोग हमसे जुड़ पाएंगे, जो दूर दराज के लोग हैं, जैसलमेर के जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव ढाणिया हैं, वहां तक हमारी बात पहुंच पाएगी, रेडियो की बात पहुंच पाएगी, आकाशवाणी की बात पहुंच जाएगी।
1: हाँ, क्योंकि हम मानते हैं कि ये रेडियो सिर्फ हमारा नहीं, आपका है। आपकी समस्याएं, आपकी कहानियां, आपके गीत, आपकी बातें और आपकी शिकायतें भी।
2: बिल्कुल, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेडियो ने जो हमारी सभ्यता है, कला है, संस्कृति है, उसको जीवंत रखने में एक अपनी महती भूमिका निभाई है। और ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि जब हमारे यहाँ पर रेडियो का नेटवर्क उत्तर उत्तर बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय और खुशी का दिन है कि ये नया FM ट्रांसमीटर स्थापित हो रहा है। इसके साथ ही आपकी आवाज़ और दूर तक

और ज्यादा स्पष्ट रूप से पहुंचेगी। और जितेंद्र, जैसा कि प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, हमारे चेयरमैन हैं श्री प्रसून जोशी, और वे बहुत अच्छे गीतकार भी हैं। अगर उन्हीं के शब्दों को, बहुत ही सरल शब्दों में वो अपनी बात कहते हैं, उन्हीं के शब्दों को अगर मैं श्रोताओं तक पहुंचाऊं तो कहना चाहूंगी कि पुरानी राहों से हटकर नई डगर बनानी है, पुरानी राहों से हटकर नई डगर बनानी है, गिरकर उठना सीखा है, अब दौड़ लगानी है। ये नया हिंदुस्तान है, आंखों में अरमान है, हाथ में हुनर है, दिल में तूफान है, अब सपनों को हकीकत की जुबान देनी है, दुनिया को अपनी नई पहचान देनी है।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम चल रहा है, मंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में आप प्रतीक्षा कीजिए मंत्री जी का उद्बोधन आपके रेडियो सेट पर।
1: तो बस श्रोताओं को लिए चलते हैं

थोड़ा थोड़ी सी जोश के साथ, भारत माता की, भारत माता की, ये हुई ना बात। जयपुर की धरती तो शूरवीरों की धरती है, कला की भी धरती है। यहाँ तो जोश भी है, कला भी है, साइंस टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। आज ये बड़ा ही शुभ दिन है, आकाशवाणी के जैसलमेर के ट्रांसमीटर का इनॉग्रेशन यहाँ जयपुर में हम सब मिलके कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ आज सौभाग्य है कि सब एक से बढ़कर एक हमारे गणमान्य व्यक्ति, समाज के लीडर्स जुड़े हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। हमारे जयपुर की सांसद मंजू दीदी, दीदी सभी इनको दीदी बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी दीदी।

बोलते हैं, वो दीदी अलग टाइप की थी, दूसरी वाली ये हमारी जयपुर की दीदी, जयपुर के घेवर जैसी है बिल्कुल। सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, पार्लियामेंट में, सदन में, लोकसभा में, सब भी आपको मंजू दीदी के नाम से जानते हैं। वैसी हमारी दीदी, हमारे ऊर्जा के मंत्री, ऊर्जावान श्री हीरालाल नागर जी, जिन्होंने राजस्थान के ऊर्जा के मानचित्र को पूरी तरह से बदल दिया है। हमारे एमएलए साहब श्री गोपाल शर्मा जी, जो जब बोलते हैं मज़ा आता है सुनने का, एक अलग ही आनंद आता है। एक कार्यक्रम में मैं साथ था आपके, बहुत ही आनंद आया था। और जो अभी बोल रहे थे कि मानव संवेदनाओं के चितेरे, मुझे तो ऐसे ऐसे शब्द भी नहीं आते भाई। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े ऐसे श्री प्रसून जोशी जी, जिन्होंने जीवन में, समाज में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा अद्भुत नाम कमाया है। और आज हमारे साथ प्रसार भारती को एक नया स्वरूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको जिम्मेदारी दी है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ और जुड़े हैं श्री पंडित विश्वमोहन भट्ट जी। आपने वीणा को दुनिया में एक नया नाम दिया। मेरे ख्याल से वीणा के बारे में आपसे बेहतर जानने वाले विश्व में शायद ही कोई होंगे। हमारा सौभाग्य आज आप पधारे इधर। उस्ताद मोइनुद्दीन खान जी, आप पधारे, बहुत ही अच्छा लगा। सारंगी में व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, मज़ा आता है। आप पधारे आप दोनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सलील भट्ट जी भी, आप भी पधारे। मैं पंडित जी को भी धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आज स्वास्थ्य कमज़ोर होते हुए भी आप यहाँ आए, बहुत धन्यवाद आपको। सीधा अस्पताल से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी श्री राजीव जैन जी, आप भी हैं। जैसलमेर में हमारे बहुत ही मजबूत विधायक छोटू सिंह जी भाटी जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी नमस्कार। छोटू सिंह जी, जब हम जैसलमेर गए थे, वहाँ से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू करने गए थे, वही छोटू सिंह जी ने जो बाजरे का चूरमा खिलाया, मज़ा आ गया था। आज भी याद आता है, छोटू सिंह जी भेजिएगा भाई बाजरे का चूरमा, मज़ा आ गया था। बाजरे के सोगरे को फर्स्ट क्लास चूर के छोटू सिंह जी, राम राम भाई साहब खमागणी, बहुत मज़ा आ गया था। तो ऐसे हमारे मजबूत विधायक, और विशेषकर जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु जुड़े हैं, हमारे अधिकारी बंधु जुड़े हैं, और पत्रकार बंधु जुड़े हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो बॉर्डर इलाके का एक FM ट्रांसमीटर चालू हुआ है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस, सूचना संपर्क विभाग, आकाशवाणी का प्रसार, वो सब ठीक है। लेकिन कुछ दिनों पहले माननीय गृह मंत्री जी बॉर्डर एरिया का निरीक्षण करके गए थे, बीकानेर गए थे और बॉर्डर एरिया को पूरा देख के आए थे। तब उन्होंने कहा कि हमारे पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कंप्लीट आकाशवाणी दूरदर्शन से पूरी तरह से कवरेज करना है। तो उस सीरीज़ में हम इसको काम को चालू कर रहे हैं। मैं राजीव जी को रिक्वेस्ट किया हूँ, अपने CEO साहब को भी किया था मैंने, गौरव जी को, राजीव जी आप भी पूरा एक पूरा बॉर्डर एरिया उठा लें, कच्छ से लेके कंप्लीट अपना जम्मू कश्मीर तक, जो भी एरिया में यहाँ पर भी कोई गैप हो बॉर्डर एरिया में, आकाशवाणी का और दूरदर्शन का भी, दूरदर्शन का भी आप देख लें, प्रसार भारती की तरफ से आप सभी देखेंगे, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का कहीं पर भी कोई भी गैप हो, उस गैप को हमें फिलअप करना है, पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कम्प्लीटली कवर करना है। आज ये पहली उसकी कड़ी है। और जैसलमेर ज़िले का करीब करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल, 80 किलोमीटर का रेडियस कवर करके ये ट्रांसमीटर सब जगह पहुँचाएगा विश्व की, हमारी संस्कृति की बात को। मैं थोड़ी बात रेलवे की करना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान को वर्षों वर्षों तक रेलवे के हिसाब से इग्नोर किया गया था, वर्षों वर्षों तक। बॉर्डर एरिया है, इतना बड़ा विशाल प्रदेश है, एक सामरिक दृष्टि से भी, स्ट्रैटेजिक दृष्टि से भी देखो तो राजस्थान का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश की स्ट्रैटेजिक टाइम फ्रेम, स्ट्रैटेजिक फ्रेम में। ऐसे में राजस्थान के लिए

जब यूपीए की सरकार थी मात्र 682 करोड़ रुपए का बजट रेलवे के लिए दिया जाता था। इतना विशाल प्रदेश और इतना महत्व सामरिक, जनता की आकांक्षाओं पे कहीं पर भी यूपीए की सरकार के समय में रेलवे का खरे उतरने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि जनता जो भी आकांक्षा करे, कोई उसके लिए काम करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, वो फंड्स होते नहीं थे। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी ली, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कल उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का एक नया कीर्तिमान बनाया। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिल रहा है जो देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना और एक ऐसी नींव रखना जो कि भारत को विकसित भारत बनाएगी। तो जब मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली तो 10,228 करोड़ रुपए का अभी अपने को राजस्थान के लिए बजट मिलता है, यानी जो बजट पहले मिलता था उसका 15 गुना। हमारे जनरल मैनेजर साहब यहाँ पर है, अमिताभ जी। अभी जीएम साहब एयरपोर्ट से आते हुए मुझे बता रहे थे कि करीब 200 स्टेशनों का, पूरे प्रदेश में 200 स्टेशनों का प्लेटफॉर्म्स को ठीक करना, उनकी ऊंचाई पूरी करना, उनकी लेंथ पूरी करना। जीएम साहब 200 करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गाँव गाँव तक सड़क पहुँचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर का स्टेशन कितने लोगों ने देखा भाई, कैसा लगता है भाई पीछे कैसा लगता है? अच्छा है तो पता नहीं चल रहा है। गांधीनगर का स्टेशन फोटो है, कैसा है? खातीपुरा कितने जनों ने देखा है? थोड़े दिन बाद में उसका खातीपुरा में जो साइडिंग है उसका इनॉग्रेशन करेंगे। अपने इतना रेलवे का काम हाथ में लिया है कि आनंद आता है देख के कि मोदी जी ने देश का, ये अपना जयपुर का स्टेशन। अभी मुझे एक भाई पूछ रहे थे कि स्टेशन के काम में किस तरह की कठिनाई आ रही है। मैं उनको समझा रहा था, विदेशों में जब स्टेशन का काम करते हैं तो पूरे ट्रैफिक को बंद कर देते हैं, यानी रेलगाड़ियां आएगी नहीं जाएगी नहीं वहां से। कई जगह तो 5-5, 6-6, 7-7 वर्षों तक, 7 साल तक ट्रैफिक बंद। इस तरह का भी देश दुनिया में कई उदाहरण है, अपने देश में तो ऐसा नहीं कर सकते। अपने तो एक दिन भी गाड़ियाँ अगर रुक जाए तो जैसा समझते हो मैं क्या बोलूँ, समस्या बड़ी हो जाए। इसीलिए काम को बहुत सावधानी के साथ करते हुए, बड़े स्टेशन का टाइम फ्रेम है 4-6 साल का करीब करीब, और छोटे स्टेशन का टाइम फ्रेम है 2-3 साल का। सावधानी के साथ ध्यान रखते हुए, और प्रदेश की जो कठिनाई, अभी मुझे भाई हमारे एमएलए साहब गोपाल जी भाई साहब बता रहे थे और दीदी मंजू जी बता रहे थे, स्टेशन के सामने लोगों की कुछ समस्या है, तो मैं जेडीए से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको बहुत संवेदना के साथ करें। जो भी हमें डेवलपमेंट करना है, किसके लिए डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट तो लोगों के लिए है, नागरिकों के लिए है, तो वो जो भी हम डेवलपमेंट करें संवेदना के साथ करें, और उसमें जल्दबाजी ना करके सबको साथ लेके, सबकी बात करके, सबको समझ के उनके लिए क्या किया जा सकता है वो सब समझ के ही हर चीज़ को करें। तो आप दोनों इसमें लीडरशिप लीजिए, और माननीय मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप भी जेडीए को इसको बात में बता देंगे। वैसा ही
गांधीनगर

0: स्टेशन भी बहुत ही सुंदर बन रहा है जयपुर गांधीनगर। ये जयपुर गांधीनगर का मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशंस को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी। स्वर्ण नगरी है जयपुर, स्वर्ण नगरी है जैसलमेर। ये जैसलमेर का स्वर्ण नगरी का स्टेशन कम्प्लीट हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। इतना सुंदर काम हुआ है, इतना सुंदर काम। जीएम साहब बहुत धन्यवाद, हमारे अमिताभ जी जीएम साहब, हमारे रेलवे के करीब 10,000 अधिकारी हैं, उनमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट अधिकारी हैं। एक बार जरा आप सब इनका अभिवादन करें। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स हैं रेलवे के, 4-5 जो बहुत अच्छे अधिकारियों में जिनको मैं मानता हूँ उनमें से आप हैं। इसी महीने इनका कंप्लीट टेन्योर कंप्लीट होता है, लेकिन अपने 2-2.5 वर्षों के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जोधपुर का स्टेशन, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और बहुत ही अगले 50 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिज़ाइन जो भी करो अगले 50 वर्षों की। ये अलवर का, अलवर का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। सेकंड एंट्री तो बन ही गया है। बीकानेर, भुजिया की नगरी बीकानेर, भाई साहब
1: आपका
0: कोटा का स्टेशन। कोटा को मॉडर्न बनाया है, जहाँ पे स्थापत्य कला, जहाँ पे मॉडर्न, जैसा जहाँ का स्वभाव, जहाँ की डिमांड, उसके हिसाब से सारा काम किया गया है। अजमेर, बहुत सारे स्टेशन हैं छोटे बड़े, कभी आप देखना सोशल मीडिया पे काफ़ी। ये आबू रोड, मतलब पूरे प्रदेश में आज 85 स्टेशंस का काम, 85 स्टेशनों पे काम चल रहा है। करीब करीब 4,600 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टेशनों में, जिससे कि एक प्रदेश के लिए एक नई नींव बने, एक बहुत आगे के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा। 15 स्टेशन पे काम पूरा हो गया है, करीब करीब 23 स्टेशन पे हो गया है, और लेकिन एग्जैक्ट हमारे सिस्टम में जब तक काम एकदम 100% पूरा नहीं होता तब तक उसको पूरा नहीं बोलते। बाड़मेर, बूंदी, दौसा, डीग, देशनोक, देशनोक तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इनॉग्रेशन के टाइम में गए थे, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद। फतेहपुर शेखावाटी, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, राजगढ़, खैरथल, जैसलमेर, मांडलगढ़, मंडावर महवा रोड, सोमेसर। सोमेसर के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी है, चाय पीते थे स्टेशन के बाहर, गांव से आते थे जब गाड़ी पकड़ने के लिए। और करीब 80% काम कंप्लीट हो गया है 45 स्टेशनों में, बहुत सारे स्टेशन हैं और काफ़ी करीब करीब अच्छी प्रोग्रेस है। साथ ही साथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, जिसको हमने गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल की ब्रांडिंग दी है, 10 हो गए राजस्थान में कंप्लीट। मारवाड़, मुंडवा, खेमली, भोपाल सागर, सोनू, हनवंत, सुंदलक, मांडलगढ़, न्यू सरादना, हिरनौदा, केरला, ये 10 कंप्लीट हो गए। 6 पे काम चल रहा है, जोगी मगना, लानेला, धानक्या। धानक्या तो पंडित दीनदयाल जी की भूमि है, तो वहाँ भी एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के हिसाब से। कोटा में, नवलगढ़ में, बीरदवाल में, और उसके बाद में 8 और अप्रूवल दिए हैं, तो एक तरीके से राजस्थान को रेलवे का पूरा बेनिफिट मिले और राजस्थान की इंडस्ट्री हो, जनसाधारण हो, उन सब के लिए बहुत सारे काम, कई सारे काम हाथ में लिए। आगरा से बांदीकुई की डबलिंग 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ की डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा का गेज कन्वर्शन वर्षों से पेंडिंग पड़ा था। मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली ये लाइन है, जो सदियों से बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी, ये लंबे टाइम से

पिच कन्वर्जन नहीं हो रहा था, मीटर गेज थी और एक तरीके से डिफंक्ट सी पड़ी थी, इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। नीमच से बड़ी सादड़ी की नई लाइन, पुष्कर एक बहुत ही हमारे श्रद्धा का बड़ा केंद्र, उसको मेड़ता से जोड़ने की लाइन, रामगंज मंडी से भोपाल मध्य प्रदेश को जोड़ने की लाइन, रेवाड़ी से खटवास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खटवास है जहाँ पे बहुत बड़ा एक मल्टी मॉडल कार्गो हब है, तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा है। उमरा से देबारी की डबलिंग, लूनी से भिलड़ी, गुजरात जाने के लिए खासकर जो पोर्ट एरिया है वहाँ जाने के लिए, मुंद्रा कांडला इन सब पोर्ट्स के लिए ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। मथुरा से धौलपुर से झांसी की थर्ड लाइन, फिर धौलपुर सर मथुरा से गंगापुर सिटी का गेज कन्वर्जन, रिंगस से सीकर की डबलिंग, सवाई माधोपुर से जयपुर की डबलिंग, शिवपुर कला मध्य प्रदेश में से कोटा की नई लाइन, तरंगा हिल अंबाजी, अंबाजी श्रद्धा का इतना बड़ा केंद्र, तरंगा हिल से अंबाजी आबू रोड की नई लाइन, और करीब करीब 46 नई गाड़ियाँ कोविड के बाद से राजस्थान के लिए चालू हुई है, जिसमें जयपुर की वंदे भारत, अजमेर की वंदे भारत, जोधपुर की वंदे भारत, जैसलमेर से दिल्ली की स्वर्ण नगरी, कई गाड़ियाँ, बीकानेर से मुंबई की गाड़ी, बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत, उदयपुर से चंडीगढ़ की एक्सप्रेस, अजमेर से दरभंगा की गाड़ी जो कि हमारे जयपुर की दीदी मंजू जी ने बहुत ही उसकी डिमांड की थी, अब दीदी की आज डिमांड है कि उसको रेगुलर करना चाहिए। क्या दीदी, दरभंगा वाली गाड़ी को रेगुलर करना चाहिए, कर दें? दीदी कह रही है घेवर खिलाएंगे अगर आप पूरा कर दोगे तो, घेवर नहीं खिलाओगे तो नहीं होगी। खिलाएंगे दीदी घेवर, पक्का मंगवा लिए? चलिए इस गाड़ी को भी रेगुलर कर देंगे, आने वाले कुछ ही दिनों में आकर दरभंगा से अजमेर जयपुर की जो गाड़ी है उसको आने वाले कितने दिन में कर पाएंगे जीएम साहब, 15-20 दिन में कर पाएंगे, पता करके बताएंगे आप। चलिए 15-20 दिन के अंदर प्रयास करें, क्या शिवाजी 15 दिन में कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 1 महीने में। चलिए सभी 1 महीने का टाइम ले रहे हैं तो 2 महीने का टाइम देता हूँ मैं, 2 महीने के अंदर अंदर इस गाड़ी को रेगुलर कर देंगे दरभंगा के लिए, जो दीदी की डिमांड है, ये आपकी डिमांड है, इसको रेगुलर कर लेंगे। साथ ही साथ दो और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जयपुर में, एक तो अच्छा AI डेटा सेंटर बना रहे हैं। AI डेटा सेंटर भविष्य का ऑयल है ये समझो, क्योंकि भविष्य की इकोनॉमी AI पे बहुत बड़ी आधारित होगी। तो जयपुर में एक AI डेटा सेंटर का काम चालू कर रहे हैं, काम को फेजेस में करेंगे। अभी मैं माननीय मंत्री जी से, नागर जी से मैं बात कर रहा था कैसे उसके लिए पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो सके, और साथ ही साथ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाएंगे जयपुर के लिए, जो हमें बार बार गुड़गांव या दिल्ली जाना पड़ता है उसकी ज़रूरत ना पड़े, वो व्यवस्था भी यहाँ पर जयपुर में करेंगे। और यहाँ के नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए MNIT में क्वांटम और AI और सेमीकंडक्टर की 3 नई फैसिलिटी का आज ही उद्घाटन करेंगे MNIT जयपुर में। एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है, और जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का बहुत ही मेहनत का काम है, तो इस डबल इंजन की सरकार में बहुत सारे नए काम राजस्थान में हो रहे हैं, उसी कड़ी में कुछ और नई चीज़ें जुड़ेंगी। आज इस कार्यक्रम में आप सब आए, आकाशवाणी की कई यादें ताज़ा की, मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से, और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से, कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। समय परिवर्तन बहुत पहले हो चुका था, हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधें, डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल। हाइपर लोकल का मतलब ये हुआ, जैसे राजस्थान का उदाहरण दें, अगर हम पश्चिमी राजस्थान में अलग तरह से बोली है, पूर्वी राजस्थान में अलग बोली है, उत्तर में जाओ तो अलग भाषा का एक प्रभाव दिखाई देता है, दक्षिण में जाओ तो

0: भाषा का अलग प्रभाव दिखाई देता है। आदिवासी क्षेत्रों में एक अलग वाइब्रेंट कल्चर है, शहरी क्षेत्रों का अलग एक अलग उसकी ताकत है, उसकी अलग ऊर्जा है। क्या हम आकाशवाणी का उपयोग करके, क्या हम दूरदर्शन का उपयोग करके हाइपर लोकल उस क्षेत्र के कलाकारों को, उस क्षेत्र के नए क्रिएटर्स को, गांव के, कस्बे के, नगर के कलाकारों को, वहाँ के क्रिएटर्स को, वहाँ पे काम किसी भी तरह का कोई पत्थर की मूर्ति गढ़ रहा है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया तक पहुँचने की। कोई बहुत सुंदर तरीके से कारीगरी का काम करता है, कोई बहुत अच्छा वीणा का शिष्य है पंडित जी का, उसको एक मौका मिले। कोई सारंगी हो, कोई बांसुरी हो, कोई किसी भी तरीके से किसी भी वाद्य यंत्र के माध्यम से, किसी भी गायन के माध्यम से, किसी भी तरीके से जुड़ता है, उसको जोड़े, उसको अपॉर्चुनिटी दे। हाइपर लोकल, हाइपर लोकल, वो आप एक परिवर्तन अगले 3 वर्षों का टारगेट लें, 1000 दिन का टारगेट लें, और 1000 दिनों में हाइपर लोकल, डिजिटल फर्स्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, और जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, जब चाहे अपनी खुद की ऐप बनाएं, जिस तरीके से लोकल न्यूज़, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान, जयपुर आए तो घेवर की बात करें, दाल बाटी चूरमा की बात करें, बाजरे का चूरमा की बात करें, सोगरे की बात करें, ग्वारफली की सब्जी की बात करें, ये चीज़ें समझाएं, राजस्थान के गट्टे की सब्जी की बात करें, कई जो चीज़ें हैं अपनी संस्कृति की, और देश भर में, उड़ीसा जाओ उड़ीसा की, बंगाल जाओ बंगाल की, तमिलनाडु जाओ तमिलनाडु की, संस्कृति को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं, हाइपर लोकल, डिजिटल फर्स्ट। इस आधार पे अगले 1000 दिनों में अच्छा एक्शन प्लान बना के, एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। आप जो ज़मीन से जुड़े हुए आकाशवाणी के सभी कर्मचारी और सभी साथी हैं, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप, इस भावना के साथ काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आभार, बहुत बहुत आभार हम सभी के समक्ष अपने उद्बोधन से।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 20 किलोवाट ट्रांसमीटर रामगढ़ जैसलमेर में जो उद्घाटन हुआ है, उस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय का उद्बोधन।
3: और बहुत ही सुखद अवसर है ये जितेंद्र, हम सब के लिए, कि राजस्थान में ये 39वां FM ट्रांसमीटर स्थापित हुआ।
2: जी हाँ, और श्रोताओं, ये मंत्री जी के उद्बोधन के साथ ही अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त।
3: और
2: दीजिए इजाज़त,
3: इस प्रसारण से हमें इजाज़त दीजिए। मैं राजकुमारी कर्णानी और
2: मैं जितेंद्र वर्मा,
3: और अब आगे का सफ़र आप तय करेंगे हमारे साथी रौनक के साथ।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड। पाइए सीमलेस बैंकिंग के साथ और भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और एक्टिवेट करें SBI प्रीमियर बैंकिंग। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो जयपुर।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मिनिमम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:22 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फिल्म टू स्टेट से अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाज़ में गीत।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति।

0: यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ में फिल्म राब्ता से गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी

90 साल और एक स्वर्णिम सफर। आकाशवाणी

0: जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

अभी आपने सुना सिमरजीत और अरिजीत सिंह की आवाज़ में सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म से गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत अरमान मलिक की आवाज़ में फिल्म वाई चीट इंडिया से।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मिनीवेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आतंकवाद के प्रति भारत की नई नीति पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ विशेष साक्षात्कार। तो लीजिए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद डॉक्टर एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन इंडियाज न्यू एंटी टेरर डॉक्ट्राइन। इंटरव्यूअर इज डॉक्टर श्रीराम चावलिया।
2: Namaskar and welcome. This is a special episode on completion of 12 years of Prime Minister Narendra Modi's momentous rule. Since 2014, we have seen incredible changes in this country and its role in the world. The promises that were made have been kept, and we are now chasing new dreams and goals and ambitions. This particular episode is focused on India's journey in the world, our foreign policy, the major accomplishments of the last 12 years, and where we are headed in a rather turbulent and choppy world. It's a great honor for us at the National Broadcaster to be hosting none other than India's External Affairs Minister, Dr. Subramaniam Jayashankar, for this discussion. Dr. Jayashankar is a very well-known personality, but I will still do the honors a little bit by mentioning the fact that he has seen and steered India's foreign policy for a long time. He was Foreign Secretary of India, which is the highest position in the Indian Foreign Service system. He was our ambassador to United States and China. And after retirement from the diplomatic

0: इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, यू आर लिसनिंग टू एन इंटरव्यू विद डॉक्टर एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन इंडियाज न्यू एंटी टेरर डॉक्ट्राइन. इंटरव्यूअर वॉज डॉक्टर श्रीराम चौलिया. दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आर यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल.
1: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम विषय आतंकवाद के प्रति भारत की नई नीति पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ विशेष साक्षात्कार अभी आप सुन रहे थे. हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर, FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़. लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत.

ट्वेल्व ओ क्लॉक, इस फिल्म का अभी आपने गीत सुना। आवाजें थी मोहम्मद रफी और गीता दत्त की। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

उधार का सिंदूर, इस फिल्म का भी आपने गीत सुना, स्वर था मुकेश और साथियों का। लीजिए अब सुनिए मुबारक बेगम के स्वर में, रामू तू दीवाना है फिल्म का यह गीत।

सांवरिया तेरी याद में। ये गीत हमने रामू तू दीवाना है फिल्म से लिया था। आवाज थी मुबारक बेगम की। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत। ये फिल्म है जुगनू और स्वर है मोहम्मद रफी और नूर जहां का।

0: मोहम्मद रफी और नूर जहां के गाए जुगनू फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। 12 बजने को है, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी।

0: तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़, 12:05 में लीजिए अब सुनिए कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 10 बजे हम विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम अपने जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और गजलें। लोक संगीत आप सुन सकते हैं 8:30 पर।

शाम 7 बजे हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, जिसमें आज चर्चा होगी खरीफ की मुख्य फसलें, गर्मी के मौसम में राजस्थानी खान पान, चर्चा होगी आत्मनिर्भर भारत विषय पर और पशुपालन में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरी उपचार आवश्यक। इसके अलावा लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

सफलता। एक वार्ता होगी, योग का जीवन में महत्व, वार्ताकार होंगी वेदिका सारस्वत। ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे वसुंधरा आचार्य और सलोनी पारिक।

5:05 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवावाणी। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा संज्ञानात्मक स्वास्थ्य और स्मृति बनाए रखने के लिए योग। लघु जानकारी का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी जागरूकता, ई वेस्ट का नियंत्रण, आत्मनिरीक्षण से

हमारे श्रोता 4 बजे सुन सकते हैं संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय एक बार फिर से सुन ले, ये कार्यक्रम 4 बजे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। घर आंगन का समय रहेगा 1:05। आज इसे प्रस्तुत करेंगी माधुरी शर्मा और रामा छंगानी। चर्चा का विषय रहेगा लुप्त होते ग्रामीण खेल और कामकाजी महिलाओं के लिए शारीरिक सक्रियता। चर्चा होगी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, बच्चों का खेल का महत्व समझाएं। और एक वार्ता होगी, ग्रामीण एवं पारंपरिक खेल वार्ताकार होंगी श्रीमती निर्मला शर्मा। ये थी कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। 12:10 होने को है। अब सिंधी कार्यक्रम हम अपने जयपुर के आमेर चैनल से रिले कर रहे हैं।

हाजिर आयो खणी अवां जो पहंजो सिंधी प्रोग्राम सबनिन बुधंदड़न के नमीशा खेमनानी जो प्यार भरियो नमस्कार साथियों अज जो प्रोग्राम आहे असां जा कारोबारी हिन प्रोग्राम में असी गाल बोल कंदा आयो व्यापारी भावरन सा कि किए हु पहंजी मेहनत ए लगन सा पहंजो व्यापार जो ए पहंजो आइंदो पुख्तो कंदा आहिन ए गड ही लुत्फ माणींदासी गीत संगीत जो गीत संगीत जी गाल कयूं त संगीत जे संसार में सितारन जी घटताई वक्त जे कहें भी दौर में न रही आहे पर घणे गायक अड़ा भी थींदा आहिन जेके पहंजे सोज भरियल सुरीले आवाज सा वक्त जे वहकारे के विहारे छडंदा आहिन त अचो असी भी अड़ी दिलकश ए पुरसुकून ॾियण वारी आवाज के बुधूं था हिन गीत ज़रिए

0: साथियों अवां हियर बुधी रहा हुआ घनश्याम वासवाणी के हाने प्रोग्राम के अग्या वधाइंदे असांजा कारोबारी प्रोग्राम जे तहत गाल बोल कयूं था कारोबारी सुरेश कुमार जी सा। साथियों चवंदा आइन भगवान महंगी घड़ी सबनी के दे पर मुश्किल घड़ी कंखे भी न दे। छो जो गुम थियल पैसो त मिली वेंदो पर गुजरियल वक्त कदें कान मोटींदो आहे। इन करे जेतरो थी सके वक्त जी कद्र कजे ऐं वक्त जी कद्र तॾहिं थी सघंदी जॾहिं असां घड़ीअ वांगुरु लगातार हलंदा रहंदासीं ऐं पंक्चुअल रहंदासीं। भई तव्हां सभु सोचींदा हूंदा अॼु नमीशा घड़ी ऐं वक़्त जी ही ॻाल्हि छो पई करे, है न? छो जो अॼु जा असांजा जेका महिमान आहिनि हू भी घड़ीअ जे वापार सां वाबिस्तो रखंदड़ हिकु कारोबारी आहिनि। सुरेश कुमार जी अवां जो घणो घणो स्वागत आहे असांजे हिन आकाशवाणी स्टूडियो में। सुरेश कुमार जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: त सभिनी खां अॻु सुरेश जी तव्हां खां इहो ई पुछण चाहींदसि कि तव्हांजो जनम ऐं शिक्षा दीक्षा किथे थी?
1: मुंहिंजो जनम जयपुर में 1974 जो थियो ऐं मुंहिंजी

0: शुरूजी शिक्षा गर्जे पासे में ही भारती बाल मंदिर सुभाष चौक ते थी। उन का पो अगिया मां कॉलेज जी पढ़ाई जे वास्ते चौड़ा रस्ता में आदर्श कॉलेज में मां 2 साल पढ़ाई कई। मुझो घड़ियुनि जो व्यापार है जिते मां घड़ियुनि जी सर्विस भी कंदो आया और विकणंदो भी आया।
1: मतलब ता घड़ियुनि जी रिपेयरिंग भी गडगड कंदा आयो, सुठी गाल आ। जी ता बुधायो कि तवा घड़ियुनि जी सर्विस भी कंदा आयो, त छा इन लाए तवा कोई कोर्स सिखियो?
0: हाँ, मां इन ला कोर्स सिखियो। जे बंदे खा मां घड़ियुनि जी रिपेयरिंग कराइंदस त उन वट मां रोज 2 कलाक वेही करे कम सिखंदस। तो वो मुखे खोले करे बुधाइंदो कि ऐसे कोयल चेक करते हैं, ऐसे आईसी प्लेट चेक करते हैं और ऐसे ये व्हील वगैरह चेक करते हैं। तो मां लगभग 2-3 महीना तई उनन वट कोर्स कयो। तो इं कंदे कंदे मां घड़ियुनि जो कम रिपेयरिंग सिखियस। पो मुखे बार बार उनन वट न वञणो पवंदो, पर कदी डिफिकल्ट मैटर थी वेंदो इमरजेंसी त पो मुखे उनन वट वञणो पवंदो, न त पो मां सिखी वियस त मां परफेक्ट थी वियस इन लाइन में।
1: त पर तांखा यो भी जानंदस कि पांजो कारोबारी ठवण जो जज्बो जेको हो तांजे मन में की आयो?
0: जदी मां पढ़ाई कंदोस तदी खाई मुझे मन में शुरू खाई बिजनेसमैन ठहण जो विचार हो। त पो मुझे मन में कारोबारी ठहण जो विचार आयो। असाया पिताश्री भी चवंदा हुआ कि तोखे मां दुकान खोलाराए तो दिया त तू उन में व्यापार कर और मेहनत कर। घर जी जिम्मेदारी तुझे मथा कोने, तू पहरी भले पांजे हिसाब सा मेहनत कर और कमाए खा। पो जदी तोखे वधीक इनकम थे पो तदी असा के कुछ दे जा। त मुझे मन में मनोबल थियो कि अगर घट भी कमाईंदस त ठीक आ, कोई गाल कोने, कम हली वेंदो। हां, घर वारन मखे फुल सपोर्ट दिनो कि भाई ठीक आ, पहरी दुकान ए कम हलाए पो अगिया दिसनासी।
1: तमाम सही चयो पिया सुरेश जी कि घर वारन जे सपोर्ट बिना असा कुछ भी कान करे सकंदा आयूं। असा के अगर बस इयो महसूस थे कि असा जा मापी ही असा जे पुठिया मजबूत वण थी बीठा इन, त पो असा के कहे भी गाल जी चिंता न थेन गुरजे। औ चवंदा ही आइन कि आज जी दुनिया में मापी जे अलावा सच्चा हितैषी केर कान थी सके। तो व्यापार जडे ता शुरू कयो, तांजे पिता साहिब ताके चयो कि जेको भी व्यापार लाए तांजे पिता साहिब तवाके चयो, त उन जे शुरुआती दौर में तवाके केहड़ी केहड़ी परेशानियों जो सामनो करनो पयो?
0: शुरुआती दौर में जी असा जो खानदानी कम ता ज्वेलरी जो हो, त असा शुरू में दुकान वरती सी त उन में ज्वेलरी जो ही कम खोलियो सी। पर ज्वेलरी जो कम इते कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल ही न हलियो। 15 दिन में अगर एकड़ी कटोरी या गिलास या थाली विकामंदी तो उन सा इनकम जो कुछ थे कोन पे, छो उन खा वधिक त खर्ची हो। मां लगभग 2 साल ज्वेलरी जो कम कयो। उन खा पो मां पने पिता साहब के चयो कि पापा पाण एडी मेहनत कई है, एडा पैसा भी लगाया है ने, पर कुछ हासिल कोन थियो। इन के हाण मां पांजे बिनचे दोस्तन का एडवाइज वरती आ, तो उन चयन कि तू इन दुकान में गिफ्ट आइटम खोल जो खोलंदे ही हलंदी। त पो मां उन्हनि जी एडवाइस सां वठी करे गिफ्ट आइटम जो शॉप खोलियो। त उन में सभिनि खां पहिरियों मां घड़ियूं, बेल्ट, पर्स, चश्मा, कैलकुलेटर, अलाराम, वॉल क्लॉक, गिफ्ट आइटम भरिया। त उहो मुंहिंजो पहिरें महीने में ही ॾाढी बढ़िया इनकम थी। त उन सां मुंहिंजो मनोबल ॿियो वधियो। त पोइ मां कम जो विस्तार कयो ऐं मुंहिंजी फैमिली भी पोइ इन ॻाल्हि सां ख़ुशि हुई। पहिरीं ख़ुशि कोन हुई कि मां गिफ्ट आइटम जो व्यापार शुरू कयो, त मूंखे कोई खास परेशानी कोन आई। सभु कुझु सामान हितां जयपुर मां ही मूंखे मिली वेंदो हो। जिन दोस्तनि मूंखे हेल्प कई उहे सभु ॿुधाए छॾंदा हुआ कि ही इन डिस्ट्रीब्यूटर आहे ऐं ही होलसेलर आहे, त मूंखे कंहिं बि प्रकार जी परेशानीअ जो सामनो न करणो पियो।
1: इहा सुठी ॻाल्हि आहे सुरेश जी कि वधीक परेशानियुनि जो सामनो न करणो पियो। त जीअं तव्हां ॿुधायो कि तव्हांजा माउ पीउ ऐं तव्हांजी फैमिली तव्हांखे ॾाढो सपोर्ट करे हली हुई, त तव्हां पंहिंजो तालमेल जेको व्यापार जो वक़्तु थींदो आहे, चवंदा आहिनि दुकानदार सॼो ॾींहुं पंहिंजे दुकान खे वधीक वक़्तु ॾींदा आहिनि, त तव्हां पंहिंजी फैमिली सां ऐं पंहिंजे व्यापार में कीअं तालमेल विहारींदा आहियो?
0: मां सभिनि खां पहिरीं त पंहिंजी फैमिली खे फुल टाइम ॾींदो आहियां। जीअं मुंहिंजे मदर जी, फादर जी कॾहिं तबियत ठीकु न आहे त उन जी मां दुकान जी छुटी करे बि पहिरीं उन्हनि खे टाइम ॾींदो आहियां। पोइ हू ठीकु थींदा आहिनि, नॉर्मल थींदा आहिनि या उन्हनि खे लॻंदो आहे का परेशानी आहे, त पोइ उन ॾींहुं मां दुकान जी छुटी करे छॾंदो आहियां। पहिरीं मां व्यापार खे टाइम न ॾींदो आहियां, पहिरीं मां पंहिंजी फैमिली खे ई टाइम ॾींदो आहियां। उन खां पोइ ई मां दुकान ते ईंदो आहियां, छोकी मुंहिंजो व्यापार कंदे कंदे रिपेयरिंग जो कमु अहिड़ो बढ़िया थी वियो आहे कि मुंहिंजा कस्टमर केॾां ई कोन वेंदा आहिनि। त इहो मुंहिंजे लाइ रिपेयरिंग जी वजह सां इहो मुंहिंजे लाइ प्लस पॉइंट आहे कि फैमिली सां मुंहिंजो तालमेल सुठो आहे ऐं उन खां पोइ मां व्यापार खे टाइम ॾींदो आहियां।
1: सही चयव, फैमिली जे सपोर्ट जे बिना

0: पाण कहिड़ो बि कमु अॻिते नथा वधाए सघूं पर सुरेश जी अगरि मां तव्हां सां ॻाल्हि कयां अॼोके वक़्त जी अॼु ऑनलाइन जो ज़मानो वधीक आहे हर कोई ऑनलाइन ख़रीदारी वधीक कंदो आहे त अहिड़े में ऑनलाइन जो पंहिंजे हिन वापार ते केतिरो प्रभाव पियो आहे त छा अॼु बि माण्हू रिस्ट वॉच जे प्रति वधीक रुचि रखनि था
1: ऑनलाइन जी वजह सां मूंखे फ़र्क़ु त पियो आहे पर मां रिपेयरिंग कंदो आहियां त उन जी वजह सां मूंखे एॾो फ़र्क़ु न पियो आहे पर ऑनलाइन जी वजह सां मुंहिंजो जेको सामान विकामंदा हुआ उहे ॾाढा घटि थी विया आहिनि पर रिपेयरिंग में मुंहिंजो कमु पहिरीं खां वधियो आहे जीअं असां पहिरीं नॉर्मल घड़ी ठाहींदा हुआसीं त उन जी मजदूरी सिर्फ़ु 100 रुपया मिलंदी मगर अॼु जीअं मल्टी फंक्शन घड़ियूं अची वियूं आहिनि उन जी मूंखे लेबर ई 500 रुपया मिलंदी आहे प्लस जेको सामान लॻे उहो अलॻि त उहो मुंहिंजे लाइ प्लस पॉइंट आहे किथे मां 5 घड़ियूं ठाहींदो हुअसि त 500 रुपया मिलंदा हाणे हिकु ई घड़ी मां ठाहींदो आहियां त उन में मूंखे 500 रुपया मिलंदा आहिनि इहो मुंहिंजे लाइ सभिनि खां प्लस पॉइंट आहे त ऑनलाइन जी वजह सां मुंहिंजो परचेज त सामान विकामण त ॾाढो घटि थी वियो आहे पर मुंहिंजो रिपेयरिंग जो कमु पहिरीं खां ॾाढो वधीक ऐं बढ़िया थी वियो आहे उन खां मां ख़ुशि आहियां
0: त इहो थींदो आहे हिकु हुनर अगरि तव्हांजे हथ में इहो हुनर आहे तव्हां रिपेयरिंग करे पिया सघो सिखियो अथव त इन हुनर जे बल ते ई अॼु तव्हां पंहिंजे व्यापार खे नए आयाम ते खणी बीठा आहियो सुरेश जी जीअं तव्हां ॿुधायो की तव्हां रिपेयरिंग जो कमु कंदा आहियो त मां इहो ॼाणींदसि की जीअं हिकु नॉर्मल घड़ी थींदी आहे उनखे रिपेयर करणु अॼुकल्ह स्मार्ट वॉच बि अचणु लॻी वियूं आहिनि त उनखे रिपेयर करण में छा तव्हांखे कुझु तकलीफ़ थींदी आहे ऐं स्मार्ट वॉच जा पंहिंजा छा फ़ाइदा आहिनि जो माण्हू वधीक रुचि रखणु लॻा आहिनि इन जे प्रति
1: स्मार्ट वॉच जा काफ़ी सारा फ़ाइदा आहिनि स्मार्ट वॉच सां हिकु ई प्लस पॉइंट आहे की तव्हां केतिरा हलिया केतिरो कैलरी वग़ैरह ख़र्ची उहो सभु इसमें अची वेंदी जेकी नॉर्मल घड़ी में न ईंदी आहे ऐं स्मार्ट वॉच में हिकिड़ो ॿियो बि प्लस पॉइंट आहे सम्झो ॿार केॾां वियल आहिनि कॉलेज स्कूल ऐं उहे न पहुता आहिनि त उन्हनि जी लोकेशन पाण खे स्मार्ट वॉच सां ख़बर पइजी वेंदी आहे पाण हिते वेठे वेठे ई उन्हनि जी मोबाइल में उन्हनि जी लोकेशन ॾिसी सघंदा आहियूं की ॿार किथे अटकी पियो आहे जो टाइम ते न पहुतो आहे इहो सभिनि खां वॾो प्लस पॉइंट आहे स्मार्ट वॉच जो छोकी गारंटी इन्हनि जी साल ताईं ईंदी आहे त साल भर ताईं असांखे का बि प्रॉब्लम ईंदी आहे कस्टमर जी तरफ़ खां त असां सर्विस सेंटर मोकिले छॾंदा आहियूं असांखे हुतां खां ठीकु थी मिलंदी आहे त स्मार्ट वॉच में गारंटी पीरियड में कोई प्रॉब्लम कोन्हे ऐं गारंटी पीरियड खां पोइ त असांजी बि ज़िमेदारी कोन्हे
0: सही चओ अथव की स्मार्ट वॉच जा अॼुकल्ह घणा ई फ़ाइदा आहिनि ऐं अॼोके दौर में हर माउ पीउ खे पंहिंजे ॿारनि जी चिंता थींदी ई आहे की उन जो ॿार जिते बि हुजे सुरक्षित हुजे महफ़ूज़ हुजे त इहे जेके गैजेट्स आया आहिनि अॼुकल्ह नए ज़माने जा त ॾिठो वञे त कुझु हद ताईं पंहिंजे लाइ हिकु फ़ाइदेमंद बि साबित थींदा आहिनि पाण अगरि जीअं सरकार जी नीतियुनि जी ॻाल्हि कयूं छो की सरकार जी नीतियूं घणेई दफ़ा बदिलजंदी रहंदियूं आहिनि त उन जो प्रभाव छा तव्हांजे वापार ते पियो आहे
1: सरकार जे द्वारा जेतिरी बि नीतियूं ईंदियूं आहिनि या वेट जूं या GST जूं असां उहे सभु पालन कंदा आहियूं ऐं सरकार खे कोऑपरेट बि कंदा आहियूं जीअं GST आई त असां GST वरितीसीं सामान ते बि ॾींदा हुआसीं उन्हनि खे पूरो कोऑपरेट कंदा आहियूं
0: ईमानदारी सां पाण पंहिंजो वापारु कंदासीं त अॻिते खां अॻिरां थींदासीं घड़ियुनि जी तव्हां रिपेयरिंग जी ॻाल्हि ॿुधाई त इन जे लाइ छा असांखे कोई कोर्स बि सिखणो पवंदो आहे
1: हा बिल्कुलु सिखणो पवंदो आहे पर अॼु जी तारीख़ में छा आहे की स्मार्ट वॉच हली वई आहे हीअ नॉर्मल घड़ियुनि जो कोर्स केरु सिखण जी कोशिशि न कंदो आहे छोकी रोज़ नया नया मॉडल अचनि पिया स्मार्ट वॉच जा त उन में छा आहे की डायरेक्ट कंपनी जी तरफ़ खां ठीकु कोन थींदी आहे उहो मदर बोर्ड ई नओं हणी ॾींदी आहे
0: जीअं चवंदा आहिनि की वापार में माण्हुनि खे वक़्तु घटि मिलंदो आहे त अगरि पाण पंहिंजी शख़्सियत जी ॻाल्हि कयूं त पंहिंजी शख़्सियत खे पुख़्तो ठाहिण लाइ पंहिंजे पाण खे कीअं वक़्तु ॾींदा आहियूं
1: इन लाइ मां जीअं ई वापार मां मूंखे टाइम मिलंदो आहे त या त मां कुझु टाइम संगीत ॿुधंदो आहियां या वरी पोइ मां प्रवचन ॿुधंदो आहियां इन सां मूंखे मन खे ॾाढो सुकून ऐं शांती मिलंदी आहे ऐं मुंहिंजो मन जेतिरो एकाग्र थींदो आहे त उहो मां ओतिरो वधीक परिवार खे ऐं वापार खे बढ़िया तरीक़े सां ध्यानु ॾेई सघंदो आहियां
0: जी सही चयव की अगरि असांजो मन एकाग्र हूंदो तॾहिं असां हर खेत्र में पंहिंजो कमु सवली तरीक़े सां करे सघंदासीं चाहे उहो वापार हुजे या परिवार हुजे या ॿियो को कमु बि हुजे हलंदे हलंदे तव्हां असांजे श्रोताउनि खे छा संदेश ॾियण था चाहियो
1: मां इहो संदेश ॾियणु चाहींदसि जेतिरो थी सघे वापार में पूरी महिनत ऐं ईमानदारी सां कमु कजे ऐं जेतिरो थी सघे सिंधीअ में ही पाण खे ॻाल्हाइणो खपे के सिंधी भाषा में ॻाल्हाइजे ऐं सिंधी भाषा जो ई वाधारो कजे जेतिरा बि नंढा आहिनि उहो पंहिंजे वॾनि खां आशीर्वाद वठी करे ही वापारु कजे ऐं घर खां निकिजे हमेशह उन्हनि खे हर कार्य में सफलता मिलंदी

वॾनि जे आशीर्वाद जे बग़ैर को कम बि सफलो कान थींदो आहे. उन्हनि जे आशीर्वाद सां ई असां अॻिरे खां अॻिरा वधंदा रहंदा आहियूं. तव्हां हिते हिन स्टूडियो में आया ऐं तव्हां अॼु पंहिंजे वापार जी ॼाण ॾिनव, तव्हांजो घणो घणो धन्यवाद. साथियो, अवां हींअर ॿुधी रहिया हुआ सुरेश जी सां कयल ॻाल्हि ॿोल. हाणे अची पहुता आहियूं प्रोग्राम जी आख़िरी कड़ीअ में, त पाण ॿिए गीत जो लुत्फ़ माणियूं. उन सां अॼु मां तव्हांखे ॿुधायां कि अॼु आहे 11 जून, ऐं 11 जून जे ॾींहुं जन्म ॾींहुं थींदो आहे हिकु सिंधी शख़्सियत ऐं विंग कमांडर नंदलाल जोतवानी जन जो. भारत सरकार जे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जे कमिश्नर जे उहिदे ते कम करे चुकिया नंदलाल जोतवानी हिकु सिंधी सामाजिक कार्यकर्ता, रिसर्च करण वारा ऐं वातावरण विज्ञान में माहिर शख़्सियत जे रूप में ॼाता सुञाता वेंदा आहिनि. नंदलाल जोतवाणी पाण में सामाजिक सुजागी हुअण सबबि उमिरि जा 8-10 पूरा करण खां पोइ बि सिंध यूथ में सुजागी आणण लाइ लॻा पिया आहिनि. इन्हनि जो जनम 11 जून 1938 में थियो सिंध कराची में. पिता जो नालो वाधूमल जोतवाणी ऐं माता जो नालो चंद्रा जोतवाणी आहे. संदसि लिखियल पहिरीं कहाणी कैदी 1961 में छपजी हुई ऐं तंहिं सां गॾु हुननि राम बख्शाणी जहिड़ी सिंधी शख़्सियत जे लिखियल किताब आखेड़ा आकाश में जो तर्जुमो.

हुननि राम बख्शाणी जहिड़ी सिंधी शख़्सियत जो लिखियलु किताबु आखेड़ा आकाश में जो तर्जुमो बि कयो हो। केतिरनि ई साहित्यिक मंचनि ते नंदलाल जोतवाणी खे केतिरी ई कविताऊं पढ़ण वास्ते घुरायो वेंदो आहे। नंदलाल जोतवाणी केतिरनि ई सामाजिक संस्थाउनि सां जुड़ियल बि आहिनि ऐं इन सां गॾु हिननि खे घणेई अवार्डनि सां बि नवाज़ो वियो आहे, जीअं इंडो पाक वार 1971 वास्ते मिलियल संग्राम ऐं पश्चिमी स्टार जहिड़नि अवार्डनि ते हिननि खे बेहद फ़ख्र आहे। तंहिंखां सवाइ विश्व हिंदी भाषा सम्मान, सिंधु रत्न, राजभाषा शिरोमणी ऐं सिंधी साहित्य रत्न जहिड़ा केतिरी अवार्डनि सां हिननि खे नवाज़ो वियो आहे। असां सभिनी पारां हिननि खे जन्म ॾींहं जी खोड़ खोड़ वाधायूं। इन जे अलावा अॼु आहे अंतर्राष्ट्रीय खेल ॾिहाड़ो, हर साल 11 जून ते मल्हायो वेंदो आहे, जंहिंखे आधिकारिक तौर ते संयुक्त राष्ट्र महासभा पारां 2024 में हर हिकु ॿार खे जोड़ण लाइ उन जी बुनियादी हक़ जी हिमायत ऐं हिफ़ाज़त करण लाइ शुरू कयो वियो। इन सां ॿारनि में ज़हनी विकास थींदो आहे, कुदरती तौर ते सिखण जी चाह पैदा थींदी आहे, जंहिं सां उन्हनि खे ज़रूरी जज़्बाती, सामाजी ऐं जिस्मानी महारतूं हासिल करण में मदद मिलंदी आहे। अचो हाणे मोटियूं था वापसि गीत संगीत जी तरफ़।

इन ही गीत सां गड असां जे हिन प्रोग्राम जो वक्त इते ही पूरो तो थे वरी अवहां सां गड जानी थींदी ईंदड़ आर्तवार ते दीह जो बारे लगी 10 मिंटन ते तेसी ताई नमीशा खेमनानी खे दींदा मोकल नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म कालिया में। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के साथ शब्बीर कुमार को, फिल्म है बेताब।

0: एस पी बाला सुब्रमण्यम आशा भोंसले का गाया हुआ ये गीत था एक ही भूल से। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब एक बजने को है, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। ये ट्रांसमीटर एक बड़े क्षेत्रफल में लोगों तक रेडियो की पहुंच को सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इस ट्रांसमीटर के बनने से और अधिक लोग रेडियो से जुड़ सकेंगे। उन्होंने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी के व्यापक प्रसारण नेटवर्क उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल सूत्र पर काम करने को कहा, जिससे स्थानीय कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स को अधिक से अधिक मौका और प्रोत्साहन मिले।
2: हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है और जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, जब चाहे अपनी खुद की ऐप बनाएं, जिस तरीके से लोकल न्यूज, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, गांव के, कस्बे के, नगर के कलाकारों को, वहाँ के क्रिएटर्स को उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया तक पहुँचने की, संस्कृति को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। इस आधार पे अगले 1000 दिनों में अच्छा एक्शन प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें।
1: रेलवे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रदेश में रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, इनमें से 15 का काम पूरा हो चुका है। श्री वैष्णव ने इस अवसर पर जयपुर अजमेर दरभंगा ट्रेन को जल्द ही नियमित करने की घोषणा की। उन्होंने जयपुर में AI डेटा सेंटर और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाने का भी ऐलान किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसी संस्थाएं अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई एक अत्यंत आवश्यक सेवा है। श्री जोशी ने प्रसारण में सत्यता और प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि सत्य को बिना बढ़ा चढ़ाकर पेश किए संतुलित रूप में समाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित रहे। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री तथा प्रसार भारती के अध्यक्ष ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के युवा अधिकारियों के साथ संवाद किया। इसके बाद श्री वैष्णव MNIT पहुंचे। वहां उन्होंने क्वांटम AI और सेमीकंडक्टर मेकर्स लैब का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव का दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करने का कार्यक्रम है। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों का उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। राजस्थान पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पिछले 6 दिनों में 50,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. BL मीणा ने बताया कि अवैध फिल्म, नंबर प्लेट, हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है।

0: अभियान के छठे दिन रिकॉर्ड 10,825 चालान बनाए गए। प्रदेश में आज जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। एफएम बैंड 101.6 मेगा हर्ट्ज 1:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन। आज प्रस्तुत कर रही हैं माधुरी शर्मा और रामा छंगाणी।

0: ए मातृभूमि तेरी जय हो, संसार के हृदय में तेरी प्रभा का उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो, कि दुख में कायर न यह हृदय हो, ए मातृभूमि तेरी जय हो। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी री इन फूटरी सी कविता रे सागे घर आंगण सुरनाली मारी सगली सी सखिया ने मारा मा छंगाणी और
1: माधुरी शर्मा ना घणा घणा राम
0: राम राम सा। माधुरी जी देखो, इया तो आपणे दिन भर ई घणी मोटी बातें होया करे है, यानी कि महत्व बातें होया करे, पण आज रे दिन री जठा पा बात करा तो आज रे दिन री बहुत ही खास और मोटी बात है कि आज है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी री जयंती।
1: बहुत सुंदर बात बताई रमा बहन, आप इतनी सुंदर पंक्तियां सुनाई, जी खुश हो गया अपन
0: सकारो। और बहना, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने भारत रे स्वतंत्रता संग्राम रा महान क्रांतिकारी और प्रखर कवि हा।
1: बिल्कुल हा। और आनो जन्म 11 जून 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुयो, और बे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रा प्रमुख सदस्य हा, और काकोरी कांड 1925 रो प्रमुख नायक हा। आनो उपनाम हो बिस्मिल या राम। आणी रचना वाली अगर आप बात करा ना तो आणी बहुत प्रसिद्ध रचना, एक ही रचना ही यानी एक अमर क्रांतिकारी गीत हो, सरफरोशी री तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, प्रसिद्ध गीत बहुत प्रचलित हो और हर क्रांतिकारी री जबान मायने रहतो।
0: बिल्कुल बेना। और जी आप बात करा 1925 रे काकोरी कांड री, तो आणी भी बखत रे मायने भारतीय लोगा रे खने लड़न रे खातर धन या हथियार जिकती बा कमी देखी जाऊती। और बीड़ बखत रे मायने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी 9 अगस्त 1925 रे मायने ब्रिटिश लोगारी जिकी ट्रेन ही बीरे मायने कूद पड़िया, और बियारे खजाने ने भी लूटियो, और भारतीय लोगा ने हथियार भी प्राप्त करवाया। और माधुरी जी, इन ऐतिहासिक कदम रे मायने राम प्रसाद बिस्मिल री मदद करी थी अपने क्रांति अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह जैसा क्रांतिकारी।
1: आप तो बहुत अच्छी बात बताई बेना ने कि इतनी बियारी हेल्प करी। और आनी कविता रचना री जब हम बात करा तो देशवासियों रे हृदय में क्रांति और गर्व रो संचार करे यारी कविता और रचना।
0: बिल्कुल। और माधुरी जी, आज आप अपने कार्यक्रम रे मायने आनी जिकी अंतिम रचना थी जीण बखत रे मायने जेल रे मायने था, तो बिन बखत रे मायने एक कविता लिखी। अच्छा। मेरी कुछ पंक्तियां है जिकी आप अपनी सखिया सु साझा कर सा।
1: बिल्कुल साझा कर सा। बिल्कुल राजा तो बिल्कुल आ कविता बहुत सुंदर ही और म्यारे लिखेड़ी भाषा मायने लिखे हो। यहाँ मिट गयो जब मिटन वालो, फेर सलाम आयो तो क्या,
0: दिल री बर्बादी रे बाद बारो पयाम आयो तो क्या,
1: मिट गई बिस्मिल री हस्ती

0: अब कोई आवे तो क्या,
1: मिट चुकी जब खुद खुदी, फिर दिल में अरमान आयो तो क्या, फिर दिल रमाई ने अरमान आयो तो क्या। तो बहना, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी री जयंती पर आओ माधुरी जी, आपा सब जना मिलपरार आने नतमस्तक होर पर प्रणाम करा, और इनके सागे ही हालो सुना ओ मायड़ भाषा रो फूटरो सो देशभक्ति गीतड़ लो
0: जी।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: माधुरी जी,
1: हाँ?
0: देखो ग्रामीण परिवेश हो या फिर शहरी परिवेश,
1: हाँ?
0: जठे लुगाया री बात आवे तो लुगाया ने देखो सबसे ज्यादा ऊर्जा री, ताकत री, हिम्मत री, यहाँ क्या कि सक्रियता री जरूरत होया करे
1: है। बिल्कुल जरूरत होया करे है।
0: और देखो बेना, काम काजी महिला वाले खातर शारीरिक सक्रियता बहुत जरूरी है, क्योंकि बेना तनाव ने जो है शारीरिक सक्रियता बा कम करिया करे, इरे अलावा ऊर्जा रो स्तर बढ़ावे और आपा ने कई बीमारियों से भी बचावे। और बेना रोजाना रो खाली आपा अगर 30 मिनट रो व्यवहार भी व्यायाम भी करा तो आज की थोड़ी सी सक्रियता है अपने पूरे स्वास्थ्य खातर जादू असर इरे मायने जो आपा ने दिखे।
1: बिल्कुल। और बेना जे थे कोई ऑफिस में काम करो या घर माने कोई व्यवसाय करो,
0: बिल्कुल,
1: या छोटा मोटा तरीका सु आपने एकदम अपने शरीर ने एक्टिव रख सको, सक्रिय रख सको, क्योंकि आप बैठे बैठे ही अगर ते कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी पर बैठे बैठे पांव ने हिला डुला सको, पेड़िया रो प्रयोग कर सको, ज्यादा से ज्यादा आप पेड़िया ऊपर नीचे चढ़ा उतरी करो, और बींग बाद शरीर में मांसपेशी है जो अच्छो काम करने लग जासी और चौकी हो जासी, मांसपेशी मजबूत बन जाती। जितो आप मांसपेशिया ने काम ले सा बीते ज्यादा मांसपेशिया अपनी है जिकी मजबूत हो जासी। और अगर आप डेस्क पर बैठे बैठे स्ट्रेचिंग कर सको है ना, थारो काम थोड़ी देर कुर्सी माते बैठन रहो, यानी कि 40-45 मिनट तक आप कुर्सी में बैठे रहो तो फिर बाद अपने शरीर ने थोड़ा हिलाओ डिलाओ,
0: 5-10 मिनट खड़ा
1: बिल्कुल बिल्कुल, और कंधा ने घुमाओ हिलाओ डुलाओ, थोड़ी देर आप अनुलोम विलोम भी कर सको,
0: बिल्कुल,
1: थोड़ा मोटो के व्यवसाय आप व्यायाम जो है वो करते रहना चाहिए। अगर आप बंद कमरा मायने हो तो थोड़ी देर आप बाहर जाओ, खुली हवा मायने सांस लो, और थोड़ी देर 30-40 मिनट थोड़ो चलो भी है ना, 30-40 कदम चलो, जिको थारे पग भी काम करे ला और बेरी मांसपेशियां भी मजबूत हो सी
0: और अपने शरीर में सक्रियता भी आवे ला,
1: बिल्कुल सक्रियता।
0: और इरे सागे देखो माधुरी जी, अगर आप कोई ऑफिस रे मायने काम करिया या जठे भी आप काम करा, दिन भर बैठने रो काम है तो बिन सारू अगर आप किसी फोन पर बात करिया या किसी बात तो बिन बखत रे मायने आप चलते चलते
1: चलते बात कर सका, या आपने जी की अंगुलिया है सूक्ष्म व्यायाम भी क्यों कर सका, अंगुलिया ने घुमा सका, अंगुलिया ने भेड़ी कर सका, या मुट्ठी बंद करना बहुत अच्छी व्यायाम है, यूं अपने शरीर में ब्लड जो रक्त संचार है वो भी बहुत अच्छी तरह हुआ है। तो अपने छोटा छोटा व्यायाम है, हाथा ने हिलाना डुलानो, गर्दन ने हिलानो और पगा ने चलाते रहो, आप कुर्सी में बैठे तो भी आप पगा ने चला सका, थोड़ा मोटो ऊपर नीचे कर सका, तो जीव का ये है कि अपने मांसपेशी मजबूत और सक्रियता अपने मायने बनी रहे।
0: और बेना देखो ये बात करे आप व्यायाम री तो शारीरिक सक्रियता रे खातर जरूरी है कि सप्ताह रे माया कम मुकम आप 150 मिनट यानी कि प्रतिदिन 30 मिनट रो मध्यम तीव्रता वालो व्यायाम करा,
1: बिल्कुल करा।
0: अब जिया की देखो 10-15 मिनट रा रोज रा सवेरे सवेरे माधुरी जी, अगर आपा ताड़ासन है, वृक्षासन है, या अनुलोम विलोम किए यो ये सब करानी तो एक काम काजी लोगा रे खातर बहुत ही चोखा साधन है सक्रियता ने बढ़ावण रा।
1: तो भी अपन इतनी परेशान भी कोनी हो कि मारे व्यायाम कोनी हो रहे और काम भी बीच बीच में चल रहे, बीच बीच में थे तारे शरीर ने थोड़ो बहुत सक्रिय भी रहा,
0: बिल्कुल।
1: इन अलावा बेना सवेरे सवेरे 20 मिनट तेज कदमा से सैर करनी चाहिए
0: और आप रो पसंदीदा गानो भी सुनो, एक गानो व्यायाम ही होया करे,
1: गानो सुनने साथ साथ रमा बहन थोड़ो थोड़ो नाच भी आनो चाहिए और गाना ऐसा सुनाओ थे जिको मैं मन कर जावे नाचन रो, तो आप नाच भी सको तो भी थारो एक तो व्यायाम भी होसी, शरीर आप सक्रिय भी होसी और मन भी खुश होसी,
0: बिल्कुल
1: शरीर और मन दोनों खुश होना बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल। और बेना इरे मायने जिका आप संगीत रो कहे कि संगीत भी एक सक्रियता बढ़ाने रो शारीरिक क्षमता बढ़ाने रो बहुत चोखो साधन है,
1: बिल्कुल।
0: बीरे सागे सागे अपने खान पान रो भी ध्यान रखनो है,
1: बिल्कुल,
0: और खान पान रे माने अपन सबसे मोटा मोटी आई बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अपनी माधुरी जी लुगेरी जी की जीभ होया करो बहुत चटोरी होया
1: करे जीभ लेवे
0: तो इन सारू बेना आपने थोड़ो सो अपना चटोरोपन भी ना कम करनो है, यानी कि तलेड़ी भुनेड़ी जी की चीजें होया करे इसे थोड़ो सो परहेज रखनो है, और जितो हो सके आपने पूरे दिन भर रमाइने 8-10 गिलास पानी पीणो चाहिए,
1: नींबू री शिकन जी है, अभी तो गर्मी चल रही है रमा बहन, तो थोड़ी थोड़ी छाछ है, राबड़ी है जी की आप घर ही बना सका, और भी राबड़ी ना आप सुबह सुबह पियो तो आप पेट भी सही रहसी और
0: दिन भर चुस्ती फुर्ती और ऊर्जा भी बनो रही,
1: बिल्कुल रहसी, और गर्मी भी कौन लागे, देखो लू भी कौन लगे, ये सब चीजा ना अपन ध्यान रखना है, आप आहार मायने ये चीजा ने शामिल करो और जंक फूड ने बिल्कुल को नहीं लेनो है, और ऐज की तलेड़ी चीजा है गरिष्ठ चीज है यूं बिल्कुल बचनो है,
0: बिल्कुल। माधुरी जी ए इतना उपाय जी आप कर लेवानी तो भाई आपा ने काम बोझ

0: नहीं, बल्कि अपने काम ने करने रो बहुत आनंद आवेला और हाँ। आप पूरे जोश से सागे हर काम ने कराला। और देखो आ सब रे मायने मने एक जिकी बात वा घणी चोखी लागी बाहे संगीत री हाँ। कि भाई संगीत सुनो तो एक अपने आप रे मायने विद्या होया करे हाँ। यानी कि कला होया करे। और जे संगीत अपने व्यायाम रे मायने जुड़ जावे, अपने शरीर क्षमता रे मायने जुड़ जावे और सक्रियता में जुड़ जावे तो इंडो तो आनंद ही अलग होया करे।
1: नाच रही थे बात कर रहे हो मन धीरे धीरे समझ आ रही है कि ते बात इशारो थारो नाच खानी है कि थोड़ो थोड़ो गीत सुनो थोड़ो थोड़ो नाचो तो भी थारो शारीरिक क्षमता बढ़ती।

0: अलग होया करे।
1: वही नाच री थे बात कर रहे हो, मन धीरे-धीरे समझ आ रही है कि ते बात इशारो थारो नाच खानी है कि थोड़ो थोड़ो गीत सुनो और थोड़ो थोड़ो नाचो तो भी थारो शारीरिक क्षमता बढ़सी और आप सक्रिय
0: रह सो। और देखो जरूर आपानी बेने आबार हाथ रे मायने भी यार कोई ना कोई काम ले उड़ो है और भी आपानो कार्यक्रम सुन रही होवेला। तो चलो आपा पानी बेना रे कार्यक्रम रे मायने थोड़ो सो आनंद देवा और सुनावा बाने फूटरो सो गीतड़लो।

0: बेना देखो यहाँ तो अपने दिन भर रे काम रे जिके दिनचर्या होया करे बीरी कोई सीमा को नहीं, यानी कि अपने दिन भर जिका काम है बे तो खत्म हो ही को नहीं, बे चलते ही रहे। पर बेना देखो ई काम रे बीच रे मायने भी अगर आपने थोड़ो सो भी मौको मिले आनंद लेवण रो और तो भी मौके ने माधुरी जी अपने चूकणो नहीं चाहिए।
1: बे आप जिया सोचा कि आप बैठे बैठे काम इच करता रहा, काम करनो भी अच्छी बात को नहीं, लगातार काम भी कोई बात को नहीं, अपन काम और बीच बीच में थोड़ा आनंद लेवनो है। हाँ। तो भी सर अपन कहिए कि अपन टाबरा सागे रमना है थोड़ा,
0: बिल्कुल और टाबरा सागे खेलने रहे तो आनंद ही कहीं और होया करे। और जठे माधुरी जी अपन गांव रे खेलारी बात करा, गांव रे खेलारी तो बात ही नहीं है, यानी प्रकृति सु मिट्टी सु जुड़ेड़ा खेल।
1: और ऐसा खेल है जिके में हींग लागे ना फिटकरी रंग आवे।
0: हां बिल्कुल,
1: तो इमें ऐसा सा खेल है जिके में कई पैसो भी कौन लागे पर आनंद इतो आवे की बिरे कोई
0: पूरो जीवन याद रहे। हाँ,
1: मार बचपन की बात याद आओ। अच्छा, अवे रमा के ने में गट्टा खेलता। अच्छा, तो मैं कहीं कौन लागे माड़ा सा गट्टा लिया और खेलना चालू। हाँ। में जिको आनंद आवे बिरी कोई सीमा ही कोनी, और यही गिल्ली डंडा है बे खेलिया, कबड्डी है जिको में कुछ भी कौन लागे और इतनी ज्यादा आनंद उठावे और सागे हार जीत रो तो खेल जी की भावना है भी विकसित होवे।
0: खो खो है अपने, रस्सी है और मार काट वालो खेल है अपने, गड्ढा वालो खेल है,
1: तो किन सर में पूरी शारीरिक सक्रियता भी रहे और जिका ए लुप्त होता जा रहा है। आज के टाइम में आप बात करानी तो ए सारा खेल अब लुप्त होता जा रहा है। अब क्रिकेट री दुनिया आ गई नई, बैडमिंटन खेल आ गया और जिका दूसरा खेल है वे विकसित हो रहा है, जबकि ए अपना पुराना खेल है चौपड़ पासा अपना ग्रामीण खेल प्रमुख खेल हो, घरे बैठे बैठे छाया में बैठे बैठे खेलता रहता है नी। तो और भी बहुत सारी जिकी नया खेल आ गया वे आप स्थान ले लियो, लेकिन पुराना जिका खेल है बेरो महत्व कम को नहीं हो।
0: बिल्कुल,
1: वे शारीरिक व्यायाम रे सागे सागे मानसिक जिकी अपनी विकास है बिना भी करावता।
0: बिल्कुल एकदम सही है,
1: जिको अपनो तर्क शक्ति मजबूत होती और मानसिक जिकी विकास है वो भी होतो,
0: वो भी चोखो होतो। और ये सागे सागे माधुरी जी अपने जिका ग्रामीण खेल होया करे बिहारी, एक और मोटी विशेषता है कि ये रमायने कोई एक या दो जनों को नहीं खेले, इरे मायने कम हो कम पांच जना, आठ जना, दस जना, पंद्रह जना,
1: समूह भावना रो विकास भी हुआ
0: तो यानी सामाजिक भावना जिकी है, समूह और जिकी भावना है बाबी बढ़िया करे।
1: बिल्कुल,
0: तो सबसे मोटी और महत्व बात है खेलारी।
1: और फिर मायने के समूह भावना जब विकसित हुआ तो भी में एकता भी विकसित
0: हुआ। बिल्कुल,
1: खेल में एक दूसरे के प्रति हार जीत रो फैसलो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देखो नी आज कितो मोटो दिन है, कितो महत्व दिन है कि आप खेल रही बात कर रहे हैं और आज अपने अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस।
1: बहुत अच्छी बात बताई रमा आप।
0: तो देखो आप इन सारू भी बात कर सा कि अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस किन सारू मनाई जाए, पर पहला आओ सुना आप फूटरो सो गीतड़ लो।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: बेना देखो बात चल रही थी अपने खेला रही और आज रे दिन री यानी कि 11 जून री जठाबा बात करा तो आपा बात करी ही कि आज है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस और थाने सब ने ठा वेला बेना कि वैश्विक स्तर पर खेलना रे अधिकार और टावरा ने खेलना रे महत्व
2: समझावण वास्ते और दिन मनावे जावे
1: हां और दिन है जिको मनाया जावे ताकि टावर है बे खेलना रे महत्व ने समझ सके
2: खेलना ने प्राथमिक सके खेलना रे प्रति बिहार और रुझान बढ़ सके
1: बिल्कुल। और देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला ने ले जान खातर और टावरा ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला से संबंधित ज्ञान देवण वास्ते भी आज रोज को दिन है वो मनायो जावे है।
2: बिल्कुल
1: और माधुरी जी आपा देखा यहाँ कि कई बार आपारा जी का खेल है वे एक स्थान सीमित तक रह जाए
2: हाँ छोटी सी जगह मायने सीमित रह जावे तो बस सब खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके
1: बिल्कुल
2: इन वास्ते खेल दिवस मनाने रो उद्देश्य भी ओइज है। तो इर सारू आज हाँ मैं खास चीज ले रहा है हाँ रमाबेन आज आप एक वार्ता ले रहे हैं वार्ता का विषय है ग्रामीण एवं पारंपरिक खेल और वार्ताकार है श्रीमती निर्मला शर्मा।
1: तो चलो बेना सुना खेला रे महत्व से संबंधित फूटरी सी वार्ता।
3: एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर को स्वस्थ रखने में खेल कूद और व्यायाम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि खेलों के द्वारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। खेलों से मनुष्य में धैर्य सहनशीलता प्रत्युपन्नमति जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। खेल सभी के व्यस्त जीवन में अहम भूमिका अदा करता है खासकर छात्र जीवन में। इसलिए हम सभी को दिन का कुछ समय खेल कूद के लिए निकालना चाहिए। खेलों से न केवल हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है वरन इससे हमारा मनोरंजन भी होता है। मनोरंजन व उच्च मानवीय मूल्यों के पोषण के साथ साथ खेल हमारे भीतर सामूहिकता और टीम भावना जैसे सामाजिक गुणों का विकास भी करते हैं। यह भी सही है कि खेल खेलते समय हम अपने शरीर के लिए तो खेलते ही हैं साथ ही साथ अपनी टीम के साथ तालमेल बिठाकर पूरी टीम के लिए भी खेलते हैं। यहाँ टीम भावना का विकास होता है। हार जीत व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक हो जाती है। खेल हमें अंदरूनी मजबूती प्रदान करते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा जीतने का प्रयास तो करता है लेकिन हार हो जाने पर निराश नहीं होता वरन अपने आगे की जीत के लिए कोशिश करता है। इस प्रकार खेल हमें मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। खैर खेलों के महत्व से तो हम परिचित हैं। आज हमारा देश खेलों में काफी सफलता भी अर्जित कर रहा है लेकिन कभी कभी ये लगने लगता है कि जीत हार और खेलों के व्यवसायीकरण ने हमारे परंपरागत खेलों को नेपथ्य में डाल दिया है। आज सोचिए कि बिना किसी पुरस्कार की कामना के गलियों गुआड़ों और मोहल्लों में खेले जाने वाले परंपरागत खेल आज गायब हो गए हैं। आज क्या गांव क्या शहर सभी जगह क्रिकेट खेलते हुए बच्चे देखे जा सकते हैं। क्रिकेट के व्यापक प्रचार प्रसार

सरकार ने परंपरागत और ग्रामीण खेलों को एक हे दर्जा प्रदान कर दिया है। आज गलियों में वे खेल खेलने को नहीं मिलते जो कभी हम खेला करते थे। खेल खेल में रूठ जाना, फिर मान जाना या मना लिया जाना जैसे मूल्य बचपन की पहुंच से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। हम आज भी अपने बचपन को याद करते हुए खो जाते हैं तो दिल में शायर सुदर्शन फ़ाकिर की मशहूर गज़ल का शेर याद हो आता है कि यह दौलत भी ले लो या शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। अपने बचपन को देखते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ आज भी याद आ जाती है कि चिंता रहित खेलना खाना और घूमना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। आज बचपन को देखते हुए लगने लगता है कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या अपने बचपन को हमारी तरह याद कर सकेंगे। आज के बचपन को देखते हुए एक शायर ने खूब लिखा है कि शहर तो वही पुराना लगता है पर ना जाने क्यों इसका अंदाज बदला बदला लगता है। दिखते नहीं अब यहाँ गली में वो बच्चे जो बचपन की याद दिला देते थे। आज भागम भाग की जिंदगी और अत्यधिक व्यवसायिकता के चलते हमने बच्चों के करियर को अधिक महत्व दिया है। हम बच्चों को खेलने का समय देते ही नहीं। दरअसल इन सभी के पीछे बच्चों का दोष नहीं है, कहीं न कहीं हमारी पीढ़ी भी दोषी है। अब इन खेलों की संस्कृति को आगे हस्तांतरित करने में असमर्थ रही है। कभी कभी आज के बच्चों को देखकर मुझे तरस आने लगता है कि जो चमक भरी दुनिया के खेलों को तो खेल रहे हैं लेकिन आनंद से सराबोर करने वाले उन खेलों को नहीं खेलते हैं जो हमारे परंपरागत खेल है। सच मानिए, यदि आपने भी इन खेलों को नहीं खेला तो आपने कुछ नहीं खेला। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होकर सोचते हैं तो कई खेल याद आ जाते हैं। आज हम फिटनेस के लिए रस्सी कूदते हैं। बचपन में हमारा ये खेल बहुत हुआ करता था। प्रतियोगिता हो जाती थी कि कौन ज़्यादा रस्सी कूदता है। याद करो पहल दूज के खेल को, लंगड़ी टांग जैसे एक टांग से भागने वाले खेल को, गुल्ली डंडा उस जमाने का क्रिकेट ही तो था। कंचे खेलने से खेल खेल में गिनती का अभ्यास के साथ साथ निशानेबाजी का अभ्यास, लट्टू की डोरी की सहायता से घुमाना और फिर उसे हाथ में उठा लेना किसी जादू से कम नहीं लगता था। सतोलिया, खो खो, कबड्डी, लुका छिपी जैसे अनेक खेलों को आज हम भूलते जा रहे हैं। हम इन परंपरागत खेलों को देखें तो ये भी आधुनिक खेलों की तरह आउटडोर इंडोर किस्म के होते थे। सांप सीढ़ी, लूडो, तिग्गा, चर भर, गट्टे और शेर बकरी जैसे खेल घर में दोपहर में आसानी से खेले जा सकते हैं, जबकि कबड्डी, कुश्ती, सतोलिया, गिल्ली डंडा जैसे खेल आउटडोर खेलों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। आज हम इन खेलों में से कुछ के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। रस्सी कूद। जैसा कि आप सभी को पता है, रस्सी वजन घटाने के लिए एक अच्छा व्यायाम है, पर गांव में इसे दूसरे तरीके से खेल की तरह खेला जाता है। वहां मजे लेकर इसे खेला जाता है। दो लड़कियां एक रस्सी को दोनों सिरों से पकड़ लेती है और उसे घुमाना शुरू करती है। तीसरी लड़की बीच में कूदती है, सबकी बारी आती है। जो सबसे ज़्यादा बिना रुके कूदती है वह जीत जाती है। शायद आप बहनों को याद होगा, यहाँ कूदने की गिनती तो कभी कभी सैकड़ों से ऊपर हो जाती थी। पहल दूज। यह खेल मुख्यतः लड़कियां खेलती है। इसको खेलने के लिए घर के आंगन, मैदान या कहीं और कई चाक या ईंट के टुकड़ों से खाने बनाए जाते हैं। फिर पत्थर को एक टांग में खड़े होकर सरकाना पड़ता है, वो भी बिना लाइन को छुए। अंत में एक टांग पर खड़े रहकर इसे एक हाथ से बिना लाइन को छुए उठाना पड़ता है। इस खेल को खेलने के लिए कम से कम दो खिलाड़ियों की जरूरत होती है। गट्टे। इसे लड़कियां गोल गोल छोटे छोटे पत्थरों से खेलती है। दाएं हाथ से गुटका उछाला जाता है और बाएं हाथ को घर या कुत्ते के आकार में रखकर उसके नीचे से गुटके निकाले जाते हैं। फिर सबको एक साथ एक हाथ से एक गुटका ऊपर उछालते हुए उठाना पड़ता है। खेलने में तो ये गेम बहुत आसान मालूम पड़ता है, पर असल में इतना आसान होता नहीं है। इसको खेलने में हाथों की अच्छी खासी कसरत हो जाती है। लुका

0: छिपी। लुका छिप के कई नाम प्रचलित है, कहीं ये आई स्पाइस हो जाता है, कहीं लुक मींचनी बन जाता है। बच्चों का ये लोकप्रिय खेल है, इसे आजकल हम हाइड एंड सीक भी कहते हैं। इस खेल में एक व्यक्ति तो कुछ दूर तक जाकर 100 तक गिनती गिनता है, ताकि उस समय में खेलने वाले खिलाड़ियों को छिपने का समय मिल सके। गिनती पूरी करने के बाद सभी खिलाड़ियों को एक एक करके ढूंढना होता है, और जो सबसे पहले पकड़ा जाता है उसे फिर यह प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कंचा। कंचा एक परंपरागत खेल है। गांव की गलियों में इसे आज भी बच्चे आसानी से खेलते हुए मिल जाते हैं। इस खेल में कुछ मार्बल्स या कांच की गोलियां बच्चों के पास होती है, उससे एक गोली से दूसरी गोली को निशाना लगाया जाता है, और निशाना लग गया तो वह गोली आपकी हो जाती है। इसके अलावा एक गड्ढा बनाकर उसमें कुछ दूरी से कंचे फेंके जाते हैं, जिससे कंचे सबसे ज्यादा गिनती में गड्ढे में जाते हैं वह जीतता है। पोसंपा। पोसंपा भाई पोसंपा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। इस गीत से आपको कुछ याद आता है? मुझे स्कूल के वो दिन याद आते हैं जिसमें हम स्कूल जाते ही बैग को क्लास में रखकर भागते थे, पोसंपा खेलते थे। इसमें दो बच्चे अपने हाथों को जोड़कर एक चेन बना लेते थे और उसमें से अन्य साथियों को गुजरना पड़ता था। यहाँ एक गीत गाया जाता था, पोसंपा भाई पोसंपा, और तभी इस चेन को बंद कर दिया जाता था। यदि बच्चा इसमें रह गया और गाना खत्म हो गया तो उसे आउट माना जाता था। चोर सिपाही। यह खेल बड़ा मजेदार होता है। इसमें दो टीमें खेलती है, एक पुलिस की भूमिका में होती है और दूसरी चोर की भूमिका में। यह खेल बिल्कुल सच वाले चोर पुलिस की तरह होता है। इसमें पुलिस चोरों की तलाश करती है, एक एक जब सभी को पकड़ने में सफल हो जाती है तो गेम पलट जाता है, मतलब चोर अब सिपाही बन जाते हैं और सिपाही चोर बन जाते हैं। आंख मिचोली। यह बहुत ही मजेदार गेम होता है। इसमें एक प्रतिभागी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे दूसरे को पकड़ना होता है। पकड़े जाने पर दूसरे खिलाड़ी को इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस गेम को एक और तरीके से खेला जाता है, एक दूसरे तरीके से एक खिलाड़ी की आंखों को बंद कर दिया जाता है और बाकी खिलाड़ी उसके सिर पर एक एक करके थपकी मारते हैं। सबसे पहले थपकी मारने वाले की पहचान हो जाने पर उसे आंख बंद करनी होती है। सांप सीढ़ी। यह भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है। इस खेल को खेलने के लिए एक बोर्ड होता है जिस पर 1 से 100 तक गिनती लिखी होती है, साथ ही जगह जगह सांप बैठे होते हैं और सीढ़ियां भी बनी होती है। इस खेल को पासे के माध्यम से खेला जाता है। पासा फेंकने पर जितने नंबर आते हैं उतने कदम आगे बढ़ना होता है। इसमें जहां एक तरफ सीढ़ी मिलने पर सीधे ऊपर पहुंचने का मौका मिलता है तो दूसरी तरफ सांप को काटने पर सीधे नीचे आ जाना होता है। कबड्डी। कबड्डी एक सामूहिक खेल है, ये पूरे भारत में खेला जाता है। भारत में इस खेल का उद्भव प्रागैतिहासिक काल में माना जाता है। ये खेल लोगों में आत्मरक्षा या शिकार के गुणों को सिखाए जाने के लिए किया जाता था। महाभारत काल में भगवान कृष्ण और उनके साथियों द्वारा कबड्डी खेली जाती थी। वर्तमान समय में कबड्डी ने एक मुकाम हासिल कर लिया है।
1: बहनों, अभी आपने ये वार्ता सुनी, ग्रामीण एवं पारंपरिक खेल वार्ता कर रहा था श्रीमती निर्मला शर्मा। केड़ी लागी आपने आ वार्ता?
2: घणी चोखी लागी।
1: अब अपना कार्यक्रम बखत जी को है
2: सीख लेण रो हो गए, तो बेना बखत है जो आगे बोलने की इजाजत कोनी दे रही है, तो इन सारू थे देवो रामा छंगाणी और
1: माधुरी
2: शर्मा ने सीख। घणा घणा राम राम सा।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन, प्रस्तुत कर रही थी माधुरी शर्मा और रामा छंगाणी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज। दिन के 2 बजने को है, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे मिड डे न्यूज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबाराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी

0: छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल

0: कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुँच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी के साथ ये आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर की और ये फिल्म थी वो दिन याद करो। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर को, ये फिल्म है अपना बना लो।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

ये आवाज़ें थी किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और सुरेश वाडकर की, और ये फिल्म थी बदले की आग। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से, और आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म है प्यार किए जा।

ये गीत हमने प्यार किए जा फिल्म से लिया था, आवाज थी मोहम्मद रफी की। और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं किशोर कुमार को, और ये फिल्म है महबूब की मेहंदी।

किशोर कुमार के गाए महबूब की मेहंदी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोल अमारू चैनल है। दिन के 3 बजे हैं, हमारी आज की पहली सभा अब समाप्त होती है। दिन में 4 बजे हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारे प्रसारण जारी रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 4 बजने को हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले दिल्ली से रिले होगा फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं। और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर

0: ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं. 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है. मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है. मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं.
0: जी जी.
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं. तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था. उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया.
0: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है. अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था, और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था.
0: जी, जी.
1: तो कैपसेक के अंदर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी. बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है. 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया. 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए. अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे. तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था.
0: जी, जी.
1: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की जानकारी थी, BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे. पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा, तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया.
0: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे. आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
1: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं. खासतौर पर भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं. हाँ. और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है. हाँ. आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते. परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं. कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं. तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है. तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है. और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं. और ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे.
0: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का.
1: जी.
0: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी.
1: बिल्कुल.
0: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी.
1: बिल्कुल.
0: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
1: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से. दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम CCTVs को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है.
0: जी.
1: हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं. उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पर खड़ा है वो उस चीज में पारंगत हो चुका है. वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए.
0: ओके.
1: उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है. उसके अलावा हमारे

0: अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल।
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप?
0: बेसिकली जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं।
1: जी, या जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाके है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल, ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
1: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है आप सीटीसी में, ये कितने समय से है?
0: मेरे को अभी एक साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर, ही इज सेकंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
0: बहुत प्रिय है।
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिएबली रहता ही था।
1: जी जी,
0: तो दिल को छूता है ये।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल as far as the playback singing is concerned, the late, the legendary Lata Mangeshkar. Yeah!

0: टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहां सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहां पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी।
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
0: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा पाकुड़ दुमका साहिबगंज जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं दुमका पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की। अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा पाकुड़ और दुमका इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पर, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पर किए हैं और उसको ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
0: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो

0: आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से बातों का जो सिलसिला उसे रखकर कोई चीज सॉल्व कर सकें?
1: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इंफॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
0: ये सब एसएसबी कर रही है।
1: बिल्कुल एसएसबी कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
0: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक इस्टेब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है?
1: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ
0: जी,
1: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं, उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहाँ पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
0: जी,
1: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे कि आप बनाइए, जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा। ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
0: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
1: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज है। 90 का दशक है, वहां पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
0: पनिशमेंट,
1: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूँ संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग हैं, जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुँचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया, और यही इसी से नक्सलवाद वहाँ पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज़ के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद के तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
0: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, या आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
1: हाँ, मैं जरूर बता चाहूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए, नाम लेना चाहूँगा मैं उनका, हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर,

0: श्री सुमित जोशी
1: जी,
0: हमारे कमांडेंट सर, परिचित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफिस थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर,

0: बारे में जाने।
1: बिल्कुल
0: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
1: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
0: जी,
1: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में। और
0: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती हूँ।
1: बिल्कुल,
0: दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं शादी?
1: बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
0: जी,
1: तो उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है। तो जब पाता, लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप वो कहिए, तो वो आता है तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो मिल जाता है तो उसके बाद वो शादी फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
0: बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितने जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
0: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं, तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
1: जी,
0: मॉडर्न पढ़ाई है और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है, बट मैंने जरूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं, तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल हो जाए।
0: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल,
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
1: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं, उनके सोचना समझना उनका तरीका बहुत अलग रहता है जी।
0: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
1: हूं, बिल्कुल
0: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अब यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड,
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पर पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: okay.
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी।
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से, अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अम्बा

0: बने, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूं, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है. न्यूज ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहां पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं. एक और है, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं CTC SSB श्रीनगर से हूँ सर, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है. आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई.
1: थैंक यू.
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं. महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है. 29th SI/DE चेतन अच्छा. लिख रहे हैं okay. आप पहचान गए होंगे
1: जी.
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद. विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं. एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर. यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस. आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें. क्यों,
1: धन्यवाद है यश का.
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी.
0: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे. चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूं ललित सर का. सही कह रहे हैं सर
1: जी.
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा, एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है. दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी. जय हिंद बाबूलाल.
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं. एक और इंटरनेशनल मैसेज यहां पे आया है, एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है. एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन विमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे.
1: बिल्कुल.
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं.
1: बिल्कुल.
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं. महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं.
0: ओके.
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है. अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है.
0: okay.
1: बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, और जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को. और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएँ बराबर का योगदान दे रही हैं.
0: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ. क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस अकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है.
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए.
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं. शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप लोग में आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फर्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है, उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है. और हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें JNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे.
0: ऑलराइट, TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा है.
1: जी, मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे.
0: ओके.
1: जी,
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका

0: प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी,
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे कि अब आगे की जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में। मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसपी सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग। और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके
0: जी,
1: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाएंगे।
0: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कम्प्लीटली, लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, एआई का जमाना आ गया, आप लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट ये है कि एआई के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे।
1: बिल्कुल नजर रखते होंगे और उन पे हम भी नजर रखते हैं, नजर दोनों ही तरफ से रखी जा रही है, और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नजर रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी हुई है।
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं, बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं।
1: बिल्कुल।
0: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है,
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: महिपाल सिंह है, ट्रेनिंग आप ही के जहाँ आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ, अच्छा लगेगा,
1: धन्यवाद।
0: ऑलराइट, 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं हम सबकी तरफ से, हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं, और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है इसका, हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूं, कमांडो प्रवीण उनमें से एक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित चाचा जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
0: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है।
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं।
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के 5 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। खाड़ी क्षेत्र के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री महाजन ने बताया कि 24 भारतीय चालक

0: दल के सदस्यों को ले जा रहे जहाज एमटी मारिवेक्स को 8 जून को ओमान के तट पर निशाना बनाया गया था। चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर बल दिया।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेजा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही ईशा रानी बरुआ और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:05 हुए हैं। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रही हैं वसुंधरा आचार्य और सलोनी पारिक।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जिसमें मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त वसुंधरा
1: और मैं हूं आपकी रेडियो साथी सलोनी पारिक।
0: दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक परीक्षा हॉल में बैठे हैं। पूरी रात पढ़ाई की थी, लेकिन प्रश्न पत्र सामने आते ही दिमाग कहता है, सॉरी, सारी फाइलें अभी उपलब्ध नहीं है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है?
1: कभी कभी ऐसा हुआ तो ज़रूर है। और दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि कई बार हम किसी दोस्त का जन्मदिन भूल जाते हैं, लेकिन 5 साल पहले हुई किसी मज़ेदार घटना की पूरी कहानी हमें याद होती है।
0: सही कहा तुमने सलोनी, आज के दौर में मोबाइल, सोशल मीडिया, लगातार नोटिफिकेशन और भागदौड़ भरी जीवन शैली के बीच हमारी याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हो रही है।
1: इसीलिए आज के कार्यक्रम में दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे हम नॉर्मल और प्राकृतिक उपाय हैं जिनके कारण हम हमारे शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी मजबूत बना सकते हैं, और वो सबसे सिंपल चीज़ है योगा।
0: दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि संज्ञानात्मक स्वास्थ्य यानी कॉग्निटिव हेल्थ क्या होता है।
1: दोस्तों, कॉग्निटिव हेल्थ हमारे मस्तिष्क की उन क्षमताओं से जुड़ा है जिनकी मदद से हम सोचते हैं, सीखते हैं और याद रखते हैं, निर्णय लेते हैं, समस्याओं का समाधान निकालते हैं।
0: यानी

0: अगर आपका ध्यान जल्दी भटक जाता है, पड़ी हुई बातें याद नहीं रहती या छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगे हैं, तो ये संज्ञानात्मक स्वास्थ्य से जुड़ा विषय हो सकता है।
1: बिल्कुल, और शोध बताते हैं कि नियमित योग और ध्यान मस्तिष्क में रक्त प्रभाव को बेहतर बनाते हैं, जिससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार हो सकता है।
0: लेकिन सलोनी, कई युवाओं को लगता है कि योग सिर्फ बुजुर्गों के लिए होता है।
1: ये एक कड़ा भ्रम है दोस्तों। आज खिलाड़ी, वैज्ञानिक, कलाकार और विद्यार्थी सभी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह ही लगातार अभ्यास चाहता है,
1: और योग उसी अभ्यास का एक बेहतरीन माध्यम है। विशेष रूप से कुछ प्राणायाम और ध्यान तकनीकें मस्तिष्क को शांत और सक्रिय दोनों बनाए रखती हैं।
0: चलिए बात करते हैं उन योग अभ्यासों की जो स्मृति और मानसिक क्षमता के लिए लाभकारी माने जाते हैं।
1: सबसे पहले आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोस्तों, यह शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है।
0: इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसे विद्यार्थी भी आसानी से कर सकते हैं और इसमें किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती।
1: दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों, इसमें मधुमक्खी जैसी ध्वनि निकाली जाती है, जिससे मन को शांति मिलती है और तनाव कम हो सकता है।
0: और हम जानते हैं कि तनाव कम होगा तो याददाश्त बेहतर काम करेगी।
1: बिल्कुल दोस्तों, तनाव मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
0: और एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है ध्यान, यानी मेडिटेशन।
1: वसुंधरा, ध्यान हमें वर्तमान क्षण में रहना सिखाता है। जब मन बार बार भटकना बंद करता है तो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है।
0: दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि हम कभी कभी मोबाइल पर कोई काम करने जाते हैं और पहुंचकर भूल जाते हैं कि आए क्यों थे?
1: इसे आजकल डिजिटल भुलक्कड़पन भी कह सकते हैं हम।
0: बिल्कुल सही कहा। इसलिए सिर्फ योग ही नहीं दोस्तों, डिजिटल अनुशासन भी जरूरी है।
1: योग हमें अपने मन को नियंत्रण करना सिखाता है और यही नियंत्रण हमारी स्मृति को भी मजबूत बनाता है।
0: दोस्तों, युवाओं के लिए एक अच्छी और योग मुद्रा है, वो है वृक्षासन।
1: दोस्तों, यह संतुलन बनाने वाली मुद्रा है और मानसिक एकाग्रता को विकसित करने में सहायक मानी जाती है।
0: वही ताड़ासन शरीर की मुद्रा सुधारने के साथ साथ जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है।
1: दोस्तों, अक्सर विद्यार्थी परीक्षा के समय बहुत तनाव में रहते हैं, उनके लिए वसुंधरा तुम्हारा क्या सुझाव है?
0: मेरा सुझाव है कि पढ़ाई के बीच 5 से 10 मिनट का ध्यान और प्राणायाम अवश्य करें। लगातार कई घंटों तक पढ़ने की तुलना में ये अधिक प्रभावी हो सकता है।
1: और दोस्तों, पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि याददाश्त को मजबूत बनाने में नींद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: तो दोस्तों, केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अच्छी नींद, संतुलित आहार, नियमित योग और सकारात्मक सोच भी सफलता की कुंजी है।
1: दोस्तों, अगर आप अपनी स्मरण शक्ति, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए जरूर निकालिए।
0: और योग उस नींव को मजबूत बनाने का एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी माध्यम है।
1: तो चलिए चलते हैं आज के हमारे कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों अब बारी है आपके और हमारे पसंदीदा सेगमेंट क्विज सेक्शन की, जहां हम आपसे पूछेंगे दो सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल है, नॉर्वे चेस 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? मैं अपना सवाल दोहराती हूं, नॉर्वे चेस 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता?
3: और दोस्तों आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई PME ड्राइव योजना का संबंध किस विभाग या मंत्रालय से है? मैं अपना सवाल दोहराती हूँ, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई PME ड्राइव योजना का संबंध किस विभाग या मंत्रालय से है?
2: दोस्तों आपको इन प्रश्नों के उत्तर सोच के रखने होंगे, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हम फिर हाजिर होंगे इन प्रश्नों के उत्तर के साथ। सलोनी, आज पूरा विश्व मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी खेल के जरिए दुनिया में शांति, विकास और उस कभी न हारने वाले जज्बे को सलाम करने का दिन।
3: बिल्कुल, और दोस्तों जब बात खेल दिवस की होती है तो बहुत से लोगों के दिमाग में आता है PT उषा, सचिन तेंदुलकर या नीरज चोपड़ा जैसे इंसानों की तस्वीरें। हमें लगता है कि खेल सिर्फ वही है जो TV या बड़े स्टेडियम में खेला जाता है।
2: हाँ सलोनी, पर असल में खेल का असली मैदान तो हमारे भीतर होता है। खेल का मतलब सिर्फ गोल्ड मेडल जीतना या रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है, खेल का असली मतलब है लाइफ को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से जीना, यानी अगर आज गिरे हैं तो कल फिर उठकर दुगनी ताकत से दौड़ेंगे।
3: क्या कमाल की बात कही है वसुंधरा ने। आज की हमारी जनरेशन जो सोशल मीडिया की रील स्क्रॉल करते करते अपनी उंगलियों की तो अच्छी खासी कसरत कर लेती हैं, लेकिन पैरों को भूल जाती है, उनके लिए खेल एक जबरदस्त स्ट्रेस बस्टर है।
2: बिल्कुल ठीक, आज जब हम पढ़ाई या करियर के प्रेशर में होते हैं तो मैदान पर जाकर सिर्फ आधे घंटे पसीने बहाना दुनिया के सबसे महंगे थेरेपिस्ट से भी बेहतर काम करता है। खेल हमें सिखाता है बिना कड़वाहट के हारना कैसे है और बिना घमंड के जीतना कैसे है।
3: बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और मैदान की मिट्टी जो मैनेजमेंट और टीम वर्क सिखाती है वो किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के बंद कमरे में नहीं सीखा जा सकता। तो दोस्तों आज ये कार्यक्रम सुनते सुनते आप लोग अपने आप से अगर एक वादा कर सकते हैं तो

0: ज़रूर करिए कि कम से कम हफ्ते में एक दिन अपने बचपन वाले उस खिलाड़ी को हम बाहर निकालेंगे।
1: चाहे वो लूडो की गोटियां घुमाना हो, बैडमिंटन का रैकेट उठाना हो या फिर शाम को दोस्तों के साथ दौड़ लगाना हो, खेलिए ज़रूर, क्योंकि जब तक आप खेलेंगे तब तक आपके अंदर का वो मासूम और ज़िंदा दिल इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस खेल वाले जोश और हाई एनर्जी को अपने दिल में समेटते हैं, शब्दों को थोड़ा सा थामते हुए आगे चलते हैं उस सुरीले नगमे की ओर।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: वैसे सलोनी, आज के इस दौर में हम सब हर चीज़ के लिए इंटरनेट और स्मार्टफोन पर डिपेंड हो चुके हैं। सुबह आँख खुलते ही सोशल मीडिया चेक करने से लेकर रात को ऑनलाइन दूध या सब्जी ऑर्डर करने तक सब कुछ उंगलियों पर चल रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा वसुंधरा। चाहे बाजार में गोलगप्पे के खाने के बाद QR कोड स्कैन कर 10 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना हो या फिर घर बैठे बिजली का बिल भरना हो, स्मार्टफोन और इंटरनेट अब कोई लग्जरी नहीं रही, हमारी बुनियादी जरूरत बन गए हैं। लेकिन पता है, तरक्की की इस डिजिटल गाड़ी में जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से हमारे लिए एक और चीज जरूरी है, और वो है डिजिटल साक्षरता और तकनीकी जागरूकता।
0: बिल्कुल, और अब डिजिटल साक्षर होने का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर रील्स देखना या चैटिंग करना नहीं रह गया है। इसका असली मतलब है कि हम तकनीक का इस्तेमाल सही, सुरक्षित और अपनी भलाई के लिए करना सीखें। आज हमारे देश के युवा घर बैठे ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं, सरकार की डिजिटल योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख कर करियर बना रहे हैं। ये सब डिजिटल साक्षरता की ही तो ताकत है दोस्तों।
1: बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस डिजिटल दुनिया की जितनी खूबियां हैं, उसके पीछे कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं, जिनसे सावधान रहना बेहद जरूरी है। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं या आसपास सुनते हैं कि किसी को लॉटरी या बिल कटने का फर्जी मैसेज आया है, किसी ने एक अनजान क्लिक पर क्लिक क्या कर दिया और बैंक अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए।
0: हाँ सलोनी, और सबसे बड़ी बात तो आम लोगों को समझनी होगी कि वो ये कि तकनीक कभी खुद गलती नहीं करती, गलती हमारी थोड़ी सी लापरवाही से होती है। बहुत से लोग आज भी अपना ATM पिन या पासवर्ड बहुत सिंपल रखते हैं, जैसे अपनी बर्थ डेट या यूनिवर्सल पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। कोई भी स्कैमर इसे आसानी से क्रैक कर सकता है। तकनीकी जागरूकता का पहला नियम ही यही है कि हमारे पासवर्ड मजबूत हो, जिनमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स जैसे कि @ #$ सब शामिल हो।
1: बिल्कुल सही कहा वसुंधरा ने। और सबसे जरूरी बात है कि OTP यानी वन टाइम पासवर्ड, चाहे कोई खुद बैंक का मैनेजर करे आपको कॉल या बिजली विभाग का अधिकारी या लॉटरी डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी, आपको अपना OTP, UPI पिन या बैंक डिटेल्स कभी भी किसी से भी किसी भी हालत में शेयर नहीं करनी है। कोई भी असली बैंक वाला कभी आपको फोन कर गोपनीय जानकारी नहीं मांगता है।
0: बिल्कुल सही। और एक और बात जो हम अक्सर अनजाने में करते हैं, सोशल मीडिया पर आई किसी भी सनसनीखेज खबर या वीडियो को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड

0: देना। डिजिटल अवेयरनेस हमें ये सिखाती है कि हम पहले उस खबर की सच्चाई जांचें, किसी विश्वसनीय न्यूज़ चैनल या सरकारी वेबसाइट पर उसे क्रॉस चेक करें और तब आगे बढ़ाएं, क्योंकि आधी अधूरी या झूठी जानकारी समाज में पैनिक फैला सकती है।
1: बिल्कुल सही बात है वसुंधरा। तकनीक एक बहुत ही बेहतरीन औजार है, बशर्ते हम इसके मालिक बने, इसके गुलाम या शिकार नहीं। तो हमारे जितने भी दोस्त ये सुन रहे हैं, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि खुद को तकनीक की रूप से अपडेट रखिए, सुरक्षित तरीके से डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनिए और इस डिजिटल क्रांति का सही फायदा उठाइए।
0: तो दोस्तों, डिजिटल दुनिया में जागरूक और सुरक्षित रहना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अपने शरीर और मन को भी स्वस्थ रखना, क्योंकि तकनीक हमारी ज़िंदगी को आसान तो बना सकती है लेकिन स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प नहीं बन सकती।
1: बिल्कुल वसुंधरा, मोबाइल की बैटरी अगर बार बार चार्ज ना की जाए तो वो काम करना बंद कर देती है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर और मन भी निरंतर ऊर्जा, संतुलन और देखभाल चाहता है।
0: और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब समय है हमारे अगले विशेष वार्ता कार्यक्रम का,
1: जिसमें हम जानेंगे कि कैसे योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सफल जीवन जीने की कला है।
0: तो दोस्तों, प्रस्तुत है वार्ता योग का जीवन में महत्व,
1: जिसके प्रस्तुत करने आ रही हैं वेदिका सारस्वत।
2: आज भोग विषयों ने मानव को उसके पथ से पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर दिया है। देवताओं को भी दुर्लभ कहा जाने वाला मानव जीवन भौतिक सुख सुविधाओं में डूब चुका है। वह कामुक, विचलित, अधीर व अस्तित्वविहीन होता हुआ गुमराह हो रहा है। सत्य से दूर हटते हम अंधकार व घोर निराशा के भयंकर प्रलय की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। ऐसे में देश की स्थिति पर ही क्यों, संपूर्ण विश्व की घृणित दशा पर प्रश्न उठता है। आज हर कोई तेज रफ्तार पाने को आतुर है, कहीं पर एक चैन की सांस लेने को वक्त नहीं है। युवा, जिसे देश की शक्ति कहा जाता है, सबसे ज्यादा असंतुलित है। वो नशे की लत में यों फंसा है कि उसे उन मादक पदार्थों में ही आनंद व रोमांच नजर आता है। वह अपराध, अय्याशी, अश्लीलता जैसी निकृष्ट आदतों से बाज नहीं आता, वो पथभ्रष्ट होता जा रहा है। ऐसे घोर प्रलय में ध्यान व योग ही मानव के लिए एकमात्र सहारा है। योग का अर्थ है स्वयं के सच्चे अस्तित्व से परिचित हो, झूठ व अंधेरे के धुंधलके से परे सत्य की स्वर्णिम किरणों को देखना। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, अर्थात किसी अच्छे कार्य में अपने आप को लगाना। कार्य शारीरिक, मानसिक, धार्मिक व आध्यात्मिक विभिन्न आधार के हो सकते हैं। पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, जिसमें योग के 8 भाग बताए हैं। यम, निवय, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। योग के संबंध में कहा गया है, योगश्चित निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा है, योग कर्मशु कौशलम, अर्थात कर्मों के करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। अतः हमें शारीरिक, मानसिक, धार्मिक व आध्यात्मिक उद्देश्यों की शांति के लिए योग की कोई ना कोई क्रिया 15 से 20 मिनट नियमित रूप से करनी ही चाहिए, क्योंकि योग आनंदमय जीवन जीने की एक कला है। योग रूपी बयार हमारे मस्तिष्क में विवेक रूपी बरखा की संदेश वाहिका है। धीरे धीरे हमारा मन भौतिक सुख सुविधाओं के प्रपंच से निकलता हुआ शांति को प्राप्त होने लगता है। शरीर में चुस्ती, दुरुस्ती व स्फूर्ति आने लगती है। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होने लगता है। हम इतने दृढ़, मजबूत व परिपक्व हो जाते हैं कि बड़ी से बड़ी बाधाएं हमें तोड़ नहीं सकती। योग एक तप है। जिस प्रकार कुंदन होने को सोना अग्नि में जलता है, उसी प्रकार योग साधना करते हुए हम योग रूपी अग्नि में अपने सभी दोष विकार खत्म करते हुए स्वर्णिम पथ की ओर अग्रसर होते हैं। योग से हमारे ललाट पर एक अलौकिक तेज व प्रकाश उज्ज्वलित होता है। एक स्वच्छ व प्रकाशित ऊर्जा हमें दिव्य बनाने लगती है। योग से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के भीतर प्राण शक्ति का संचार होता है और हमें आत्मिक बल मिलता है। योग हमारे व्यक्तित्व पर भी गहरा प्रकाश डालता है। योग से हमारी वाणी स्वच्छ व तेजस्वी होने लगती है। सभी विकार दूर होते हैं व वाणी

की सार्थकता सिद्ध होती है। पातंजलि योग शास्त्र में प्रतिपादित अंतरयात्रा का विज्ञान अपने प्रयोगों में निरंतर सूक्ष्म होता जाता है। व्यवहार के प्रयोग विचारों की ओर व विचारों के प्रयोग संस्कारों की ओर सरकने लगते हैं। व्यवहार को रूपांतरित परिवर्तित करने वाले यम नियम के अनुशासन, शरीर व प्राण को स्थित करने वाले आसन एवं प्राणायाम की क्रियाओं की ओर गतिशील होते हैं। यह गतिशीलता प्रत्याहार व धारणा की आंतरिक गतियों की ओर

0: करने वाले आसन एवं प्राणायाम की क्रियाओं की ओर गतिशील होते हैं। यह गतिशीलता प्रत्याहार व धारणा की आंतरिक गतियों की ओर बढ़ती हुई ध्यान व योग की सूक्ष्मताओं में समाती है। इसके बाद शुरू होता है योग की सूक्ष्मताओं की विविध प्रयोगों का आयोजन। कहने को तो योग की विधा एक है, परंतु इसके सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतर अनेकों हैं। जो साधक इन्हें जितनी अधिक अनुभव करता है, उनकी योग साधना उतनी ही प्रगाढ़, परिपक्व एवं प्रखर होती जाती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि के ये अलग अलग स्तर साधक की साधना की अलग एवं विशिष्ट स्थितियों की व्याख्या करते हैं। यादें, संस्कार, कल्पनाएं, इन्हीं सबसे हमारा चित्त भरा है। इनकी शुद्धि हो जाए तो मन की निर्मलता व सुंदरता स्वाभाविक है। यथार्थ में योग साधना ही स्मृति परिशोधन का पर्याय है। योग संगीत की तरह है, जो सुर, ताल व धुनों से बुना है। जब हम इस संगीत को जानने लगते हैं तो ये ठंडी बयार की तरह हमारे मन मस्तिष्क को आनंद की लहरों से भिगो देती है। ये प्रक्रियाएं योग के नियमित अभ्यास से ही संभव है, क्योंकि धीरे धीरे इस संगीत की धुनें लयबद्धता से हमारे चंचल चित्त पर अंकुश करती हुई शांति के दिव्य सुकून की ओर ले चलती है और हमारे भीतर आनंद की हरियाली व शांति का मीठा झरना बहने लगता है। फिर चाहे जीवन का कोई भी मौसम क्यों ना हो, इस हरियाली का कभी पतझड़ नहीं आएगा। योग भारतीय संस्कृति का एक अनुपम उपहार है, जो आज मनुष्य के व्यस्ततम एवं तनावग्रस्त जीवन की एक अमूल्य औषधि है। योग से न केवल हमें मानसिक ऊर्जा मिलती है, अपितु हमारा अंग अंग दुरुस्त रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि निवास करती है। इतना ही नहीं, वर्तमान में योग की दिव्यता व गुणवत्ता को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शिक्षा पाठ्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया है और इसे प्रार्थना स्थल में अनिवार्यता प्रदान की है। जब देश का नागरिक विवेकशील होगा, तब सुंदर व स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। परंतु आज हमारा समाज दूषित होता जा रहा है। दिखावे, झूठ व शानो शौकत के मत में चूर समाज क्या कभी प्रगति करेगा? नहीं, हमें सत्य के स्वर्णिम पथ पर बढ़ना होगा। जो समाज मौलिकता व नैतिकता को महत्व नहीं देता, वो समाज गिरने लगता है। हमें एक ऐसे समाज का गठन करना होगा जो दुर्बुद्धि से रहित, स्वार्थपरता से परे, विवेकशीलता से मानव कल्याण के लिए विचार करे। ये तभी संभव है जब हम योग से अपनी आंतरिक शक्ति को प्रज्वलित करेंगे और ये अंदर की धधकती अग्नि समस्त संसार में मशालों के समान अंधकार मिटाती हुई सत्य के उजले सूर्य को प्रकाशित करेगी।
1: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे ये बेहद ज्ञानवर्धक वार्ता कि कैसे योग हमारे आंतरिक जीवन और शरीर के विकारों को साफ करता है, जिसकी वार्ताकार थी वेदिका सारस्वत।
2: वसुंधरा, अभी इस वार्ता से पहले हमने बात की थी डिजिटल साक्षरता की, लेकिन पता है इस तकनीकी क्रांति के पीछे एक ऐसा काला सच भी छिपा हुआ है जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं।
1: काला सच? सलोनी, तुम तो अचानक इतनी गंभीर हो गई, ऐसा क्या छुपा हुआ है इस चमचमाती डिजिटल दुनिया के पीछे?
2: वसुंधरा, मैं बात कर रही हूँ उस कचरे की जो हमारी डिजिटल लाइफस्टाइल से पैदा हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ई वेस्ट। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जब हम फ़ोन या हैंडफोन हमारा ख़राब हो जाता है, तब हम उसका क्या करते हैं?
1: सलोनी, इसमें सोचना क्या है, हम उसे या तो कबाड़ वाले को दे देते हैं या फिर घर की किसी अलमारी के कोने में पटक देते हैं। मेरी खुद की दराज में दो पुराने स्मार्टफोन सालों से सो रहे हैं।
2: और यही सबसे बड़ी सिरदर्दी है वसुंधरा, भारत दुनिया में ई वेस्ट पैदा करने वाले टॉप देशों में आता है। जब हम इन पुरानी बैटरियों और कंप्यूटर पार्ट्स को साधारण कचरे में फेंक देते हैं, तो इनमें मौजूद लेड और मरकरी जैसे जहरीले केमिकल्स हमारी मिट्टी और पानी में घुल जाते हैं।
1: यानी वही पानी और अनाज घूम फिर कर हमारे शरीर में आता है, जो खतरनाक बीमारियां फैलाता है। हम अनजाने में अपने ही पर्यावरण के लिए जहर बो रहे हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है सलोनी?
2: इसका उपाय बहुत सिंपल है, 3 R's का रूल, जिसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल।
1: दोस्तों, ये 3 नाम तो हम सबने सुने हैं। रिड्यूस, सिर्फ शौक के लिए नया मॉडल आते ही पुराना फोन मत बदलो। दूसरा है रीयूज।

0: अगर फोन चालू हालत में है तो आपके काम का नहीं है तो उसे किसी जरूरतमंद को दान कर दो।
1: और तीसरा है रिसाइकिल। दोस्तों, रिसाइकिल के लिए खराब गैजेट्स को कचरे में फेंकने के बजाय शहर के ऑथोराइज्ड ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स को देना चाहिए, वो इसे सुरक्षित तरीके से रिसाइकिल करते हैं।
0: वाह सलोनी, वैसे एक मज़ेदार फैक्ट ये भी है कि इस ई वेस्ट के अंदर सोना, चांदी और तांबा जैसी कीमती धातुएं भी होती है। सही रिसाइकलिंग से इन्हें वापस निकाला जा सकता है, जिसे अर्बन माइनिंग कहते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा, यानी थोड़ी सी जागरूकता से हम अपनी इस खूबसूरत धरती को जहरीला होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, तकनीक खूबसूरत है लेकिन हमारी प्रकृति उससे कहीं ज़्यादा अनमोल है।
0: क्या बात कही है सलोनी। तो दोस्तों, अपनी दराजों को साफ करिए और कुदरत को महकता हुआ बनाए रखिए।
1: और अब बात करते हैं उन वीर सपूतों की जिनकी निगाहें सरहदों पर है, इसलिए हमारी रातें सुकून से गुजरती है, जिनके साहस की गाथा शब्दों से नहीं बल्कि सम्मान से कही जाती है। उन वीर जवानों को नमन करते हुए सुनिए पद्मश्री कैलाश खेर की दमदार आवाज में भारतीय सेना।
2: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: वसुंधरा, ई वेस्ट साफ करके दराजों को टटोलना तो हमने सीख लिया, लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर झांक कर देखने की कोशिश की है?
3: अंदर झांकना मतलब अपनी आत्मा का एक्सरे करना। सलोनी, तुम आज बड़े ही दार्शनिक मूड में लग रही हो।
2: अरे नहीं वसुंधरा, मैं बात कर रही हूँ आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन की। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम दूसरों को जज करने में तो बहुत वक्त लगाते हैं, लेकिन खुद को वक्त देना भूल जाते हैं।
3: ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही सलोनी। हमारे जितने भी युवा दोस्त इस वक्त प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सबसे ज़रूरी चाबी है।
2: बिल्कुल, और बहुत से स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि हम पढ़ते तो बहुत हैं पर सिलेक्शन नहीं होता। असल में कमी पढ़ाई में नहीं बल्कि इस बात में होती है कि हम अपनी गलतियों का सही एनालिसिस नहीं कर रहे हैं।
3: यानी जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, हम मॉक टेस्ट में कहाँ नंबर गवा रहे हैं, तब तक सुधार कैसे होगा। अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना ही आत्मनिरीक्षण है दोस्तों।
2: और इसी के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं करना होता है हमें। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट आप खुद को दीजिए। बैठिए, अपनी डायरी उठाइए और सोचिए कि आज के दिन को आपने कैसे जिया, कहाँ समय बर्बाद किया और कल क्या बेहतर कर सकते हैं।
3: बिल्कुल सही, जो इंसान खुद का आंकलन करना सीख जाता है उसे हराना नामुमकिन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो अपनी असफलताओं से निराश नहीं होता बल्कि उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेता है।
2: क्या बात कही है वसुंधरा। तो दोस्तों, दुनिया को बदलने की शुरुआत हमेशा खुद को समझने से होती है। आज से ही थोड़ा सा वक्त खुद के लिए कर दीजिए, अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और फिर देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमती है।
3: सच में सलोनी, जब हम खुद को गहराई से जान लेते हैं तो मन को एक अलग ही सुकून और शांति मिलती है, और इस सुकून भरे एहसास को शब्दों में आगे ले जाने का वक्त हो गया है।
2: बिल्कुल ठीक, तो चलिए शब्दों के इस सिलसिले को थोड़ी देर के लिए थामते हैं और अपने मन को और रिफ्रेशिंग करते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ।

0: दोस्तों, अब बारी है उन सवालों के उत्तर की जो हमने आपसे कार्यक्रम के शुरुआत में पूछे थे। तो आज का हमारा पहला सवाल था, नॉर्वे चेस 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? और इसका सही उत्तर है ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद रमेश बाबू।
1: और आज का हमारा दूसरा सवाल था, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएमई ड्राइव योजना का संबंध किस विभाग या मंत्रालय से है? और इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज।
0: दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपके सबसे पसंदीदा और काम के सेगमेंट का, यानी रोजगार समाचार। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका सामने आया है।
1: बिल्कुल सही कहा वसुंधरा। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2026 के लिए बम्पर नोटिफिकेशन जारी किए हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, और पदों की संख्या जानकर तो आपके चेहरे पर पक्का मुस्कान आ जाएगी। इस बार ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुल 12,256 पदों पर भर्ती निकाली गई है।
1: वाकई ये बहुत बेहतरीन अवसर है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, तो देर मत कीजिए क्योंकि

0: भरने की आखिरी तारीख है 22 जून 2026।
1: सलोनी, अगर हमारे दोस्तों को इसकी योग्यता के बारे में बताएं तो इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है।
0: और आयु सीमा की बात करें वसुंधरा, तो अलग अलग पदों के अनुसार मिनिमम एज 18 ईयर्स है और अधिकतम आयु 30 से 32 वर्ष तय की गई है। वैसे आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी।
1: तो दोस्तों, इस बम्पर वैकेंसी का पूरा फायदा उठाइए। विस्तृत जानकारी, पात्रता मापदंड और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तुरंत SSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in पर विजिट करें। सलोनी, आज का सफर सचमुच बहुत खास था। बात शुरू हुई योग से, जिसने हमें बताया कि एक स्वस्थ शरीर के साथ एक काग्र और सजग मन भी कितना आवश्यक है।
0: बिल्कुल वसुंधरा। और फिर हमने जाना कि खेल सिर्फ मैदान में जीतने का नाम नहीं है, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और निरंतर प्रयास का भी प्रतीक है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमें यही प्रेरणा देता है कि जीवन में सक्रिय रहना और चुनौतियों का सामना करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल। साथ ही ई वेस्ट जैसे महत्वपूर्ण विषय ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि तकनीक का उपयोग जितना जरूरी है ही जरूरी उसकी जिम्मेदारी भी है। एक छोटा सा जागरूक कदम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
0: और डिजिटल साक्षरता पर चर्चा करके हमने जाना कि आज के दौर में केवल इंटरनेट का उपयोग करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल भी जरूरी है।
1: दोस्तों, अगर आज की पूरी चर्चा को एक ही सूत्र में पिरोया जाए तो शायद वो ये होगा कि विकास केवल तकनीक से नहीं, केवल ज्ञान से नहीं और केवल स्वास्थ्य से भी नहीं होता। सच्चा विकास तब होता है जब शरीर स्वस्थ हो, मन जागरूक हो, सोच सकारात्मक हो और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बनी रहे।
0: बिल्कुल, क्योंकि योग हमें खुद से जोड़ता है, खेल हमें आगे बढ़ना सिखाता है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता हमें प्रकृति से जोड़ती है और डिजिटल साक्षरता हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। और यही छोटी छोटी बातें मिलकर एक बेहतरीन नागरिक और बेहतरीन समाज का निर्माण करती है।
1: जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि सीखते रहने वाला व्यक्ति हर उम्र में युवा बना रहता है।
0: तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों और परिवार का ख्याल रखिए। सुनते रहिए आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युवानी। अगले सफर में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत शाम 7 बजे से। आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे, चर्चा विषय रहेगा खरीफ की मुख्य फसलें, साथ ही सुनेंगे गर्मी के मौसम में राजस्थानी खान पान और सुनेंगे कृषि और पशुपालन से संबंधित जानकारियां और लोक गीत। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे अश्विनी व्यास और दीवान दान रत्नू। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 7:45 बजे से।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 9:15 बजे से रात्रि 9:30 बजे हम आपको सुनाएंगे सुगम संगीत जिसमें आप सुनेंगे गजलें।

रात 10 बजे जयपुर से रिले होगा विज्ञान पत्रिका, रात्रि 10:30 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: ये था आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। संध्या के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज MT सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो के

0: 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को MT मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C-295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी एट 90। फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम बेटी बेटे।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म बेटी बेटे में। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम मेरे हम सफ़र।

0: लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 6:30 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में जयपुर से रिले होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, दो सीटें भाजपा और एक कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार देने को सरकार की प्राथमिकता बताया गया। साथ ही महिला नेतृत्व आधारित विकास, उद्यमिता, कृषि और स्टार्टअप पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी शिरकत की। श्री शर्मा ने राजस्थान के विकास के विजन, उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं को पेश किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण

0: खेल तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने इस समय इन संस्थानों में परिवर्तन पर भी जोर दिया। श्री वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल मंत्र के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने की बात की।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर,

0: लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने रेल विकास के लिए पुरजोर प्रयास किए हैं।
0: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: इसके बाद श्री वैष्णव ने MNIT में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI लैब विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने प्रदेश भाजपा मुख्यालय से प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। PBM अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले की गहन जानकारी लेने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बीकानेर पहुंचे। श्री खींवसर ने चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही प्रभावित प्रसूताओं के परिजनों से बात कर बेहतर इलाज करवाने का आश्वासन दिया। चिकित्सा मंत्री ने मीडिया से कहा कि मामले की विस्तृत जाँच करवाई जा रही है, रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक की जाएगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अस्पताल परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में जैविक उर्वरक निर्माण और भंडारण संयंत्र में हो रही गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा किया। श्री मीणा अपनी टीम के साथ कानोता स्थित एक फैक्ट्री का जायजा लेने पहुंचे, जहां निर्धारित मानकों के विपरीत बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे थे। कृषि मंत्री ने इन उर्वरकों की पैकेजिंग और लेबल पर अंकित जानकारियों को भ्रामक बताया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कच्चे माल का उचित भंडारण और नहीं किया जा रहा था। मीडिया से बातचीत में श्री मीणा ने बताया कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। बुरी तरह से बेरहमी किसानों का लूटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। खरीद के उसकी उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए तीनों प्रत्याशियों को विधानसभा में आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ. सतीश पूनिया, डॉ. अलका सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार नीरज

0: डांगी को चुने जाने की घोषणा की। उन्होंने तीनों प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिए। राज्य में कल से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% छूट दी जाएगी।
1: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देश किया है कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से नागरिकों को 22 प्रमुख विभागों की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इनमें खातों के विभाजन, नामांतरण और रास्ते संबंधी प्रकरण तथा अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़, जलभराव, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक और समन्वित तैयारियों पर जोर दिया गया है। आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी, समयबद्ध चेतावनी और प्रभावी समन्वय पर बल दिया। डॉ. मीणा ने 15 से राज्य और जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्षों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉनसून की नियमित निगरानी के लिए वेदर वॉच ग्रुप का भी गठन किया गया है। साथ ही डॉ. मीणा ने सभी बांधों, जलाशयों और एनीकटों की मरम्मत तथा रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के दौर के बीच आज से कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव की उम्मीद है। राज्य में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। 12 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने के भी आसार हैं। बदले मौसमी तंत्र का असर 14 जून तक बना रह सकता है। अंधड़ और बरसात की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा गया। तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत में मिट्टी ढहने से 3 महिला श्रमिकों की मृत्यु हो गई। घटना वैशाली नगर इलाके में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियां केवल घरेलू कामकाज तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अहम योगदान देती हैं। अदालत ने कहा है कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित करना समाज में उनके योगदान को कम आंकना है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि घर की देखभाल और प्रबंधन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, 2 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। जिले में 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत विभिन्न गतिविधियां और व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक,

0: ग्राम पंचायत, निजी और राजकीय शिक्षण संस्थानों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, कारागृहों, पुलिस थानों, पर्यटन स्थलों, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर योग आयोजन किए जाने, योग संयम पोर्टल पर पंजीकरण कराने तथा योग के उपरांत फोटो अपलोड करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन को भी अब जंक्शन का दर्जा मिल गया है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित गंगापुर सिटी से दौसा मार्ग पर रेल यातायात सुचारू होने के बाद कोटा रेल मंडल प्रबंधन की ओर से ये घोषणा की गई। जिले में इन दिनों जनगणना का कार्य प्रगति पर है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से 33 प्रश्नों को पूछकर एचएलओ ऐप पर दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज की। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला। अभियान का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरी, कलश यात्राएं, पीपल पूजन, जल पूजन, पौधरोपण, संकल्प, शपथ, श्रमदान और मैत्री फुटबॉल मैच जैसी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली के साथ अभियान का समापन हुआ और इसी के साथ हरियालो राजस्थान अभियान का आगाज हुआ। अभियान के तहत इस मानसून सीजन में सघन वृक्षारोपण किया जाना है। इसके लिए लोगों को नर्सरियों से पौधे वितरित किए जा रहे हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बीते दिनों खुशखबरी मिली है। बाघिन T124 रिद्धि दो शावकों के साथ नजर आई है। नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर देखी गई। वहीं जिले के पालीघाट स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में दुर्लभतम घड़ियाल प्रजाति के नन्हे बच्चे अंडों से बाहर निकल रहे हैं। पालीघाट क्षेत्र में अब तक करीब 100 घड़ियाल हैचलिंग्स का सुरक्षित जन्म हुआ है। चंबल क्षेत्र में वन विभाग के प्रयासों की ये एक बहुत बड़ी सफलता है। जिले में इन दिनों मौसम का मिला जुला असर है। कभी तेज गर्मी तो कभी पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की और मध्यम बरसात का दौर चला। इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि इससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। आगामी मॉनसून के मद्देनजर डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल के सदस्यों ने जिले के विभिन्न बांधों का निरीक्षण कर यहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से यातायात और सड़क सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन, फर्जी नंबर प्लेट, लाल नीली बत्ती, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, सायरन हूटर, नंबर प्लेटों के अनधिकृत शब्द चिन्ह और स्टिकर लगाकर पंजीयन चिन्ह की दृश्यता को प्रभावित करने, नियम विरुद्ध नंबर प्लेटों वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम कृषि महोत्सव 2026 के तहत करमोदा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में उर्वरकों के संतुलित उपयोग विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विभाग की ओर से आत्मा योजना के तहत फूल उत्कृष्टता केंद्र में पर्यावरण, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती विषय पर कृषि संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देकर पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता का आह्वान किया गया। जिले में इन दिनों राजस्व विभाग की ओर से रास्ता खोलो अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में विभागीय अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में गैर मुमकिन रास्तों पर बरसों से किए गए अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले भर में अनेक स्थान पर सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटवाकर रास्ते खुलवाए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो दुनिया में उथल पुथल रा मौजूदा दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट FM ट्रांसमिट

0: रो जयपुरों उद्घाटन कीनो। प्रदेशों राज्यसभा चुनाव में तीन ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनी चिया, दो सीटा भाजपा और एक कांग्रेस रा खाता में। और राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि दुनिया में अनिश्चितता रा मौजूदा दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। वे आज नई दिल्ली में राखी जी नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग में बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि विकसित भारत बनावन ओड़ी बढ़ रहा देश में केंद्र और राज्य सरकार ने भेड़ी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वे कहो कि राज्य बीच एक दूजा री मदद बातचीत और विचारों लेन देन भी होनो चाहिए। मीटिंग में चोखी भनाई लिखाई कौशल विकास और नौजवानों ने नौकरी धंधारा मौका मुहैया करावन माथे सरकार रो खास ध्यान भेवन री बात कही जी। ईसा गई महिलाओं री अगुवाई माए विकास उद्यमिता खेतीबाड़ी और स्टार्टअप रे बारे माए चर्चा करी जी। मीटिंग माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान रा विकास री सोच उपलब्धियां और कार्य योजना मा री जानकारी दीनी। सूचना और प्रसारण रेल और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर में आकाशवाणी रा परिसरों जैसलमेर जिला रा रामगढ़ में 20 किलोवाट बूता वाला एफएम रेडियो ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन कीनो। इस मौके श्री वैष्णव सामरिक अवसंरचना माथे ध्यान देता थका आकाशवाणी और दूरदर्शन सरहदी हलका में संचार व्यवस्था मजबूत करण सारू कहो। वे डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: केंद्रीय मंत्री प्रदेश माए न्यारा न्यारा रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रा कामा रोई जिक्र कीनो। वे कहो कि एनडीए सरकार रेला रा विकास सारू हर संभव कोशिश कर रही है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: कार्यक्रम में राज्य रा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर री सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती रा अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी रा महानिदेशक राजीव कुमार जैन समेत कई आला अहलकार मौजूद रहा। ये पाछे श्री वैष्णव मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरो कर वठे सेमीकंडक्टर क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई लैब विकसित करण रो ऐलान कीनो। वह विद्यार्थियों सागे बातचीत कर नवाचार तकनीक और स्टार्टअप ने बढ़ावो देवन माथे जोर तीनो। केंद्रीय मंत्री जयपुर रा कृषि अनुसंधान केंद्र माए राखी जिया विकसित भारत संकल्प सम्मेलन माए शामिल भिया। वह प्रदेश भाजपा मुख्यालय माए खबर नवी सांसा गई बातचीत कीनी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले काल जयपुर पधारेला। वह नशा मुक्त भारत अभियान रा तेत रख्या जावन वाला कार्यक्रम में खास पावना रा तौर शिरकत करेला। वारो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण सम्मान समारोह में शामिल भेवन रो कार्यक्रम है। बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल माए जापा वाली लुगाइया री तबियत खराब हेवन रा मामला री जानकारी लेवन सारू चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बीकानेर माए डॉक्टर और अहलकारा सागे मीटिंग कीनी।

0: अर हालात रो जायजो लीनो। वह अस्पताल में भर्ती महिलाओं रे साता पूछी। मंत्री जापा वाली लुगाइया रा परिवार वाला सागे बातचीत कर अर वाने बेहतर इलाज रो भरोसो दिरायो। चिकित्सा मंत्री खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि मामला रे विगतवार जांच कराई जा रही है अर जांच रिपोर्ट मिलिया पाछे जरूरी कार्रवाई करी जावेला। ई मामला न लेर कांग्रेस रा कार्यकर्ता आज पीबीएम अस्पताल परिसर में सरकार रे खिलाफ प्रदर्शन कीनो अर नारा लगाया। वह वाकया री आला दर्जा री जांच करावण अर दोषियों रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई री मांग कीनी। इन दौरान पुलिस ने हल्को लाठीचार्ज करनो पड़ियो। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर में जैविक खाद बनावण रा कारखाना में कथित गड़बड़ियां रो खुलासो कीनो। वह कानोतारा एक कारखाना में तय मानका रे इतर जैविक खाद बनावण री ठाकीनी। कृषि मंत्री ई खाद रा कट्टा अर लेबल माथे मंडोड़ी जानकारियां ने भरमावण वाली बताई। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका डॉक्टर मीणा बतायो कि काश्तकारा सागे किड़ी भांतरी दगाबाजी बर्दाश्त नहीं करी चावेला। वह कहो कि नकली खाद बीज बेचण वाला रे खिलाफ आखा राज्य में अभियान चलायो जा रियो है अर दोषी मिलण वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी चावेला।
1: ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। बुरी तरह से बेरहमी से किसानों का लूटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। खरीद के उसकी उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश और राज्यसभा रे तीन सीटां रा द्विवार्षिक चुनाव सारू तीन ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनी चिया है। राज्यसभा चुनाव रा रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा, भारतीय जनता पार्टी रा डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर अलका सिंह और कांग्रेस रा नीरज डांगी रा चुनिया जावन रो ऐलान कीनो अरवाना चुनिया जावन रा सर्टिफिकेट तीना। राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। शहरी शिविरों में साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत और फ्री होल्ड पट्टा जारी करण समेत जनता रा भलारी न्यारी न्यारी सरकारी योजनाओं रो फायदो लेवण सारू पात्र लोगों अर्जियां ली जावेला। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा बतायो कि लारला बरसा री लीज री बाकियात री रकम एक मुश्त जमा करावन पर ब्याज माए पूरी छूट दी चावेला।
2: नगर निकाय में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर में अहलकारा सागर मीटिंग कर जरूरी हुक्म दीना। वह राज्य में चौमासारी ऋतु में बाढ़, पानी भरण, घनी बिरखा वेवण और दूजी कुदरती आपदाओं रो सामो करण सारू मिलर तैयारियां करण माथे जोर दीनो। डॉक्टर मीणा 15 जून नु राज्य और जिला स्तर माथे आपदा नियंत्रण कक्ष चालू करण रा हुक्म दीना। आपदा प्रबंधन मंत्री कहो कि चौमासा माय हालात माथे लगातार निगरानी राखण सारू वेदर वॉच ग्रुप बनाई चियो है। वह सगला बंधा और एनिकटा ने मरम्मत और रख रखाव तय करण रा हुक्म ही दीना। अरब मौसम प्रदेश में पड़ रही जोरदार गर्मी और उमस बीच आज कठे कठे मौसम में बदलाव रा आसार है। 12 जिला में आंधी बारिश सारू चेताईचियो है, जबकि कठे कठे ओला पड़बारी संभावना है। 14 जून ताई अंधड़ और बरसात री संभावना ने ध्यान रखता थका जनता ने सावचेत रहवण री राय दी रिची है। ये बीच आज कई थोड़ा पारो 40-46 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करीचियो। केंद्र सरकार सुरक्षा प्रणालियां और माली बुनियादी ढांचा माथे साइबर अपराधा रा बढ़ता खतरा सारू चेतायो है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र री ओर जारी चेतावनी रे मुजब साइबर धोखाधड़ी सारू डीप फेक वीडियो काम लिया जा रहा है, जहां नजरिए साइबर

ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जॉब पोर्टल डेंटिंग प्लेटफॉर्म और फोन रे जरिए ठगी करे है। केंद्र सरकार एथेनॉल भेड़ बनाई जा पेट्रोल माथा एक्साइज ड्यूटी माफ करती नहीं है। वित्त मंत्रालय का नियम जारी अधिसूचना रे मुजब 22, 25, 27 और 30 फीसदी एथेनॉल भेड़ो करी जा पेट्रोल माथा एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून न विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117-800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो दुनिया माए उथल पुथल रा मौजूदा दौर माई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर रो जयपुर उद्घाटन कीनो। प्रदेश राज्यसभा चुनाव माए 3 ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनी चिया। 2 सीटा भाजपा और 1 कांग्रेस रा खाता माए। और राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं अश्विनी व्यास और दीवानदान रत्नू।

0: ग्रामीण जगत की अडीक रखने वाला सगला ग्रामीण और किसान भाई बहन ने अश्वनी व्यास
1: और दीवान दान रत्नूरा
0: आज रा घना घना राम राम। दीवान भाई राम राम।
1: राम राम राम राम। अश्विनी भाई के किसान भाई रे खातर इन जेठ महीने में कदई तो गर्मी री तासीर गर्मी री ऋतु रा दिन आवे तो कदई कदई बायरेरा और बारिश रा फुहारा भी मिल जावे।
0: बिल्कुल दीवान भाई बात थे सही की। और अब की तो देखो कि प्रकृति रो ईसो गजब मेल है कि जेठ भी दो है, एक अधिक मास रो जेठ है और 15 तारीख बाद जो साधारण अपने हर साल जेठ आया करे वो है, तो जेठ रो महीनो दो बार होने रो मतलब है कि 60 दिन तेज गर्मी और गर्मी आप देख ही रहा।
1: गर्मी तो देखो सा जेठ में गर्मी पड़ी है और किसान भाया ने भी ध्यान है कि अपारे गर्मी पड़े ला और उन ध्यान भी रखा और साथे साथे देखो खरीब री फसल री तैयारी है नी किसान भाई अधिकतर जेठ रे महीने में यानी जून रे महीने में ही कर लिया करे क्योंकि पहला कहीं हो तो अश्विनी भाई कि पहला अपारे गाँव में परंपरागत रूप बारिश क्योंकि संसाधन कम आ और बारिश जेठ में चालू हो जाती जेठ री आगत फसल चालू हो जाती भी पहला किसान भाई आप रे कहीं करता क्योंकि संसाधन कम हा तो खेती भी कम होती तो इन खातर खेत री तैयारी आप री पहले ही कर रखता जहाँ खेत में सूड करनो है खेत ने सावड़ करनो है और भी यही अब आज री वक्त में भी किसान भाई हाड़ी री मान लो अपारे तैयारी करे तो हाड़ी री तैयारी अपने पहला ही गर्मी में कर गहरी जुताई री खातर ऊपर तवील निकालनी तो पहला ही तैयारी कर बहुत फायदो है। यदि आप पहला खेत में तैयारी कर रखा तो आगे जी सावणी फसल है खरीफ री फसल है भी वास्ते अपने बहुत कुछ सारू मिल सके आगे जार।
0: बिल्कुल दीवान भाई बात तो थे बिल्कुल सही की कि आज की खरीबरी फसल लेने पर

0: जून और जुलाई में बोआ री कटाई रो टाइम जी को है वो सितंबर अक्टूबर या करे है। लेकिन ये फसलों की कई विशेषता भी है जिया इन्हें ज्यादा गर्मी और तापमान चाहिए और सागे सागे घने पानी की भी जरूरत
1: है। भी जरूरत
0: तो ये मायने धान री खाद्यान्न अगर आप बात करा तो इनमें धान चावल है, मक्को है, बाजरो और ज्वार है। इरे सागे सागे खरीफ में दलहन फसल भी होवे जिया तुअर री दाल होगी, मूंग हो गयो और उड़द हो गयो। बिरे अलावा जिको आप तेल काम में लेवा वो भी तिलहन फसल भी ई खरीफ रे मौसम में ही लगाई जाए है। चिकेर मायने सोयाबीन है, मूंगफली है और तिल है। और सागे सागे नगदी फसल जिके ना पकवा या रेशेदार फसल भी कहता जिका अपने चोखा दाम किसान भाई ने दिलावे भी में कपास, जूट और गन्नो भी लगायो जावे। तो एज की खरीबरी फसला है अगर इरा उन्नत बीज लेर और किसान भाई आपरे खेत में लगावे तो चोखो मुनाफो कमा सके और खेतरी जी की मिट्टी है बेरो स्वास्थ्य भी चोखो राख सके।
1: बिल्कुल असुनी भाई, क्योंकि अपार ऐठे प्रमुख रूप हूँ देखा तो मुख्य फसल अपार ऐठे देखो सा खाद्यान्न रे मैं तो प्रमुख रूप हूँ अपार ऐठे जी की फसल है। बाजरो भी है, बाजरे रे साथ साथ है दूसरी फसल में दलहनी फसल भी है, तलहनी फसल भी है जहाँ मोठ है, मूंग है, बाजरो है, कपास है और मूंगफली है। तो एड़ी मुख्य फसलां हैं जिकी उत्पादन दृष्टि राजस्थान में महत्व रखे और मूंगफली जड़ी फसल है जिको पूरे भारत में भी आप रो महत्व रखे। तो प्रगतिशील किसान है इन बारे में थोड़ो ध्यान भी रखे है। और यदि आप बीज बात करी, बीज अच्छो लेवा लो और बीज मतलब निरोगो बीज आप काम में लेवा तो अपार उत्पादन भी प्रभावित नहीं हुए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सका और किसान ने जिकी सहायता मिले है ज़्यादा उत्पादन हो जिकी आर्थिक रूप हूँ बीरू भी कोई घोट को नहीं हुए।
0: वाह दीवान भाई, बहुत चोखी जानकारी थे दी। लेकिन अब आप चाल सा कार्यक्रम रे एक दूसरे हिस्से में जिक मैं सुन सा आप कार्यक्रम रो पहलड़ो लोकगीत
1: सुनाओ सा बढ़िया सी लोकगीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: वाह दीवान भाई, बहुत चोखा पांबार कीतड़ लो सुनियो और सुनिया संदेशा। अब देखो गर्मी रोज को मौसम है, आप पहला भी गर्मी पर बात करी दीवान भाई कि 50 रे एड़े गेड़े तापमान रहे तो देखो अपना शरीर कहीं पशु पक्षियारा कहीं पेड़ा री हालत कहीं पूरा वातावरण जो है नी वो एक अलग तरीके री कमजोरी ने महसूस करे।
5: बिल्कुल के गर्मी अपने ज़्यादा ही पड़े ऐसा, और गर्मी तो पड़ती रहे है क्योंकि अब अगले तापमान आप देखियो हो कि 47 डिग्री तक तापमान आप बीकानेर क्षेत्र में अमूमन रह हुए है। इन खातर गर्मी रे ऋतु मया देखो सुनी भाई आपने ध्यान रखनो पड़ी। आप भाई श्रोता है जिसका किसान भाई सोचे है कि गर्मी री खान पान री बात हमेशा करे पर करनो ही पड़ी क्योंकि गर्मी मैं ऋतु में आप खान पान री बात नहीं कराला क्योंकि पहलो सुख हुए निरोगी काया। यदि आपारो खान पान अच्छो रहेला तो ही आपारी काया निरोगी वेला, और काया निरोगी वेला तो ही अपा खेत में काम काज है दूसरा काम काज है कर सकाला। इन खातर अपन ने अपारो स्वास्थ्य रो ध्यान रखनो पड़सी और इन्हें राख रो बाद में दूसरा काम अपा करा।
4: बिल्कुल दीवान भाई, और स्वास्थ्य ने ध्यान रखने रे साथे साथे देखो अब यार कई जगह आप भी सुनने में आवे कि सुबह 10 बजे से लेर और सिंजारा 5 बजे तक बहुत ज़्यादा जरूरी काम नहीं हुए तो आपा घर से बांडे नहीं निकला।

0: अगर निकलना पड़े तो माथो और शरीर दूसरा अंग कपड़े से ढककर निकला ताकि लुआपन नहीं लगे। इसके अलावा दीवान भाई खान पान भी बहुत बड़ी भूमिका निभावे। अगर आप खाली पेट घर से बांधे निकला तो लू लागने की संभावना बहुत ज्यादा रहे। ई वास्ते सुबह आपने कले वो कर कुछ न कुछ खार और पछे ही घर से बांधे निकलना है। और खान पान में दीवान भाई एक बात और है, आपा लंबे टाइम से वह बात कर रहे हैं मोटे नाजरी, तो आपने तो देखो अठे सबसे ज्यादा बाजरी रो उपयोग आपा करा, तो बाजरी रो जब सर्दिया में उपयोग करा तो आपने शरीर ने गर्मी देवे, और बीरो ही अगर आप गर्मिया में राबड़ी के रूप में उपयोग करा तो आपने माइनस ठंडक देवे,
1: ठंडी तासीर है, बिल्कुल
0: तासीर ठंडी होवे तो आपने माइनस ठंडक देवे तो लू से बचाने में बहुत कारगर है। लेकिन दीवान भाई आपने चाहिए कि ए धीरे धीरे गांव ढाणिया में राबड़ी रो प्रयोग कम होने लाग गयो,
1: देखो
0: तो बीरा परिणाम भी आपन देखने मिले
1: मिले। आपा देखो क्या वहाँ के आपा ठंडी तासीरी चीज़ा खावा लेवा और बीर में आपा मोटे नाजरे में या काम में ले सका बाजरी, बाजरी ऊँची की चीज़ है बिनियोड़ी बिने राबड़ी भी मावे, लेकिन ए चीज़ा आपा ने फायदो अब इना रो ज़्यादा दिखने लाग गयो। जन आपा इर बारे में बतावा और लोग बाग कहीं है के वो तो पशुपालन माथे या अपन किसान बहारे यदि घरे दीणो हो ही तो छाछ हो ही और छाछ होवेला तो बाराबड़ी बनेला। पर किसान भया ने आज भी है कि पहला अपारे पशुपालन हर घर में पशु रहता और हर घर में पशु राखता जन हर घर में दीणो हो और हर एक प्रत्येक घर में दीणो हो जन छाछ राबड़ी मिलती। आज रे वक्त में कहीं सोराप हो गयो, एक अश्विनी भाई सही बात बात हूँ के गाँव शहरा में भी नहीं गाँव में भी कहीं सोराप हो गयो। अपारी आवण वाली जी की पीढ़ी है अबारी वर्तमान पीढ़ी भी कह सका बा इतनी सोराप हो गयो कि काम करनो कम चवे है। देखो पशुपालन घरे आप पशु राखा ला दुधारू पशु वास्ते अपने थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े, बीरो सार संभाल भी करनो पड़े है, कचरो पानी री भी व्यवस्था करनी पड़े है और बीरो थोड़ो थोड़ो ध्यान रखनो पड़े, मतलब कुल मिलाकर एक अपा टाबर ने ध्यान रखा बिनी प्रकार पर दुधारू पशु ने ध्यान रखनो पड़े। पर एक खातर सार संभाल आज वक्त में चाहे कोई महिला हो चाहे घर में कोई पुरुष हो चाहे जवान हो टाबर हो टिंगर है बे धीरे धीरे इन काम रे प्रति लापरवाह हो गया, काम में ध्यान कम रखे है जिनसु अपारो दुधारू पशुवारी कमी होगी और दुधारू पशुवारी कमी होगी जन छाछ राबड़ी दूध रे माथे फर्क पड़ गयो। पर इ खातर अपाने पाछो दूध रे माथे दूध डेरी माथे पशुपालन माथे किसान भाया ने ध्यान रखनो पड़ी कि हरेक किसान रे घरे पशु हुए और दुधारू पशु रूप में गाय भैंस जरूर रखा जिनसु अपार छाछ राबड़ी अपारी थाली में बपरा सका।
0: बिल्कुल दीवान भाई बहुत चोखी और बात बताई थे कि किया खान पान रे माध्यम से किसान साथी और ग्रामीण साथी अपने जिका है शरीर ने ई लू सूरी गर्मी से बचा सके। अब आप कार्यक्रम में सुन सा अगलो लोकगीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जा...

दीवान भाई भारतीय सेना रो एक आप बहुत चोखो गीत सुनियो और सुनया संदेश। तो भारतीय सेना देश री सीमा वाली रक्षा भी करे।

0: बांडे सु और देश ने अंदर सु भी मजबूत रखे। और लारले दिन आप देखियो कि आत्मनिर्भर भारत रे तहत जिका सेना रे मायने हथियार है, गोला बारूद है, जिका वाहन है, साधन है, धीरे धीरे अब अपने देश में ही बनने लायक है।
1: बिल्कुल अश्विनी भाई, आत्मनिर्भर भारत रो ताजो उदाहरण ओई हो के लारले देखिया लारले साल में ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर आत्मनिर्भरता रो ही एक जीतो जागतो उदाहरण है के भारत में हर चीज में, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गयो, चाहे वो सेना में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे चिकित्सा में हो, और चाहे कृषि क्षेत्र में हो। अपन बात कृषि क्षेत्र भी करां तो कृषि क्षेत्र में लगभग सगली फसलों में भारत है वो आत्मनिर्भर है, और भारत आयात करे फसलों रो, चौकी चौकी फसलों रो भारत विदेशों में आयात करे और बीरो मूल्य कमारियो है। इन खातर भारत अबारी बखत में आत्मनिर्भर है।
0: बिल्कुल दीवान भाई, और थाने ध्यान हुए तो पहला अपना देखा करता कि गाँव रे मायने स्वराज थो, एक गाँव रे मायने हर तरह रे काम करने वाला लोग एक ही गाँव में मौजूद है, चाहे अन्न उगाणो हो, चाहे लोहे रो काम हो, चाहे चमड़े रो काम हो, चाहे खाती रो काम हो, आपस में आदान प्रदान करो और वे आत्मनिर्भर गाँव रिज की श्रृंखला चाली। बीच रे मायने भी में थोड़ो सो बदलाव जरूर हो, लेकिन अब धीरे धीरे समय रे साथ आपनो देश भी पथ पर ही आगे बढ़ रहे और आपा ये आत्मनिर्भरता रे मामले में बहुत आगे चला गया। और अब आपा देश ई जगह पहुंच गयो कि विदेश सूजी की चीज़ा आपा मंगार और देश में प्रयोग करता वे चीज़ा अब अपने देश में बढ़ने लगी। जी हाँ, थे बात करी अबार लारे एक बहुत बड़ी महामारी आई कोरोना, तो बीरी जी की वैक्सीन बनी
1: बाबी
0: आपा भारत में बनाई
1: ली
0: और बहुत बड़ी सफलता हासिल करी।
1: बिल्कुल
0: विश्व देश बचो, दुनिया बची,
1: दुनिया दूसरे देशों ने भी बचाया।
0: बिल्कुल आपा मानवता ने बचाने रे मायने दुनिया में बहुत बड़ो काम करियो बा वैक्सीन बनार। और ये कहो जी यहाँ की दुनिया रे अलग देशों में चढ़े संभव ही कोनी थी दवाई, बट भारत में बनोड़ी दवाई गई और लोगों ने भी महामारी सु बचायो। तो आत्मनिर्भरता रे मामले में देश आगे, लेकिन दीवान भाई एक चीज ध्यान रखना पड़ी, देश री सबसे छोटी इकाई बा गाँव ढाणी ही है। तो अगर अपना गांव अपनी ढाणिया आत्मनिर्भर होसी तो तकनीक रे माध्यम से मोबाइल है, ई नाम बाजार है, सॉयल हेल्थ कार्ड है, एजकी तकनीक रे माध्यम से गांव रे मायने विकास री गंगा बह रही है।
1: और आ विकास री गंगा असुनी जद होवेला जद शिक्षा अपारी अपा शिक्षा रे क्षेत्र में अग्रणी होवेला, अपा अपार टाबरा ने चौकी शिक्षा देवेला, टाबर यदि शिक्षित होवेला तो अपा भी एक प्रगतिशील किसान हो जावा। मतलब एक किसान है वो एक बार कहीं खेती करे 10-20-30-40-50 बीघा माथे, यदि वो ही शिक्षो पढ़ियो लिखियो किसान है तो वो खेती करी वो ही आप रे माइता ने कही देखो यहाँ है अपा खेती बाड़ी तो करा हाँ, लेकिन ई खेती बाड़ी में अपा थोड़ा 2 रुपया लगा पर और नई तकनीकी खेती करा तो अपन ने फायदा मिली, जहाँ पोलिया उस खेती कर ली है, कोई बागानरी खेती कर ली तो बानुई तकनीकी खेती होगी तो वो एक विकास होगी शिक्षा क्षेत्र में। तो इन प्रकार अपा विकास कराला और इन वास्ते सरकार सहयोग भी प्रदान कर रही है।
0: बिल्कुल, सरकार तो देखो पूरा सहयोग प्रदान कर रही है, लेकिन जरूरत है कि आपा भी चीज ने समझा और आपा गाँव री भी इकाई ने आत्मनिर्भर भारत रे रूप में स्थापित करा, ताकि आपने गाँव रे युवा जी का है वे कमाओ ने बांडे नहीं जावे और गाँव में रह ही कमावे और देश ने सशक्त करे। बातें तो बहुत सारी आपने करनी है दीवान भाई, लेकिन अब
1: हाथ साथ गीतल्ला भी सुनो है तो अगली कड़ी में सुना हो गीत।

और एक स्वर्णिम सफर। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु साझेदारी, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों का मिलकर काम करना जरूरी है। जिन देशों से ज्यादा प्रदूषण होता है उन्हें आगे बढ़कर समाधान की दिशा में काम करना चाहिए और गरीब और कमजोर देशों को पैसा, तकनीक और जरूरी मदद देनी चाहिए। UNFCCC जैसे ढांचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में यूनाइटेड नेशंस एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब वादा करने का नहीं, काम करने का समय है। साथ मिलकर हमें कम कार्बन वाले एक सुदृढ़ भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के सिर्फ 5 सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश मिलकर लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहे थे।
2: चंदन भाई, आप बहुत अच्छी बात अबार करी और गीतड़ो भी सुनियो, लेकिन पशुपालक भाई जी का भी यानी एक चीज रो विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर अपनो पशु थोड़ा बहुत भी बीमार हो जावे तो आप पारंपरिक और प्राथमिक उपचार पशु रो घरे कर सका।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन बीरे सागे सागे दीवान भाई, जरूरी है कि आप डॉक्टरी उपचार भी जरूर सुकरावा। डॉक्टरी दवाएं जी की है 2 लाख से जदि पशु ठीक और स्वस्थ हो पाए।
3: बिल्कुल, यदि आप कोई प्रकार की बीमारी है तो आप घरेलू कोई इलाज करवा, लेकिन पूरा इलाज आप पशु चिकित्सक ने खन्ने जार बटे पशु ने दिखार हीज कराणो है और टीकाकरण कराणो घणो जरूरी है। डॉक्टरी सलाह अनुसार आप टीकाकरण करावा। अब देखो अश्विनी भाई, जाता करता टाइम रो वक्त पूरा नहीं है, ऊँ पहला आप देखो सर टाइम रो वक्त तो पूरो हो रही है असुन वे, अब आप कोई गीत कोई हरजस नहीं सुना सका, तो बात आप करता हाँ पशुपालन बात है, तो टीकाकरण कराना घणो जरूरी है।

ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंकज उदास की आवाज में ये रचना।

सुगम संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं स्वाति नाटेकर के स्वर में ये रचना।

स्वाति नाटेकर का इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम था हमजोली। श्रोताओं, फिल्म संगीतीय कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम दर्पण।

0: फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं।
1: बेटे, प्रार्थना के लिए नहीं चलोगे?
2: मेरी माँ मिली?
1: मिल जाएगी, आओ चलें।

ये आवाज़ें थी मन्ना डे और साथियों की। फिल्म का नाम था प्रहार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, यशोदास और हेमलता की आवाज़ में। फिल्म का नाम चित्तचोर।

फिल्म धनवान में लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, ये सुनते हैं लोक संगीत।

ज्ञानेश्वरी शर्मा के स्वर में अभी आपने सुना ही राजस्थानी लोकगीत। आइए सुनते हैं कालूनाथ पार्टी की आवाज में ये लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं।

0: समंदर खां और साथियों के गाइस गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या AFCAT

0: www.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: We attach high importance to the welfare and well-being.
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: Peace and stability in the region.
1: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
4: The visit will provide an opportunity.
5: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
4: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
1: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
6: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
7: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
8: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत

0: कथा अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप है। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल है। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया।

भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यशोदास के स्वर में अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था नैया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम संत ज्ञानेश्वर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना।

0: तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं।

फिल्म धरती में मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 9:30 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में ये गजल।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में अभी आपने सुनी ये गजल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में गुलाम अली की आवाज में ये गजल।

यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में जयपुर से रिले होगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

गुलाम अली की आवाज में गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

यशोदास को अभी आपने सुना फिल्म स्वामी में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम बुद्धू पड़ गया पल्ले।

0: दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम पाकीजा।
1: ये किसकी आंखों का नूर हो तुम, ये किस

ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी

फिल्म अमर प्रेम में अभी आपने सुना है लता मंगेशकर को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मन्ना डे उषा मंगेशकर और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम दिल की राहें हैं।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम कभी कभी।

मुकेश और आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म प्यार का सागर में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम अमानत।

ये आवाज़ें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था चोरी चोरी। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को फिल्म जिगरी दोस्त में।

0: मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया।

0: और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve